या है जनाब सैयदा को पुरसा है, तो फजाइल होने चाहिए लेकिन मसाइब लाजमी जुज है मजलिस का। तो बहरहाल मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन चंद एक नकात थे जो मैं समझता था कि बहुत ज़रूरी है। चंद एक और नकात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, क्योंकि आखिरी मजलिस से फिर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। बहरहाल ये मजालिस बे इंतहा हमारे लिए बारजिश हैं। जिक्र सैयद शहदा का जहाँ पर फ़र्श बिछा दिया जाए वहाँ पर बैठना चाहिए। एक और मैं बात कहूँगा कि यहाँ तक मासूम अलैहिस्सलाम ने कहा है कि जहाँ पे भी जन्नत का बाग देखो वहाँ पे शामिल हो जाओ, जन्नत के बाग में जाके बैठ जाओ। तो लोगों ने कहा कि मौला दुनिया में जन्नत का बाग कहाँ? कहा कि जहाँ पे हमारे मोमिनीन बैठे हों और हमारा जिक्र कर रहे हों वो दुनिया में जन्नत का बाग है, लाजमन उसमें जाके बैठ जाओ। तो बहरहाल ये जो मजालिस हैं जिक्र हैं ये बहरहाल बहुत बाअर्जिश हैं, इसकी अर्जिश को समझें। और बहरहाल जो जिक्र हो रहा है परवरदिगार इसकी हिफाजत फरमाए और ये जिक्र इसी तरह से जारी और सारी रहे, क्योंकि इसी जिक्र से वाबस्तगी हम सब के लिए खैर है, हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, हमारे नस्लों के लिए खैर इसी के अंदर। फजलान गिरामी इस मजालिन मजालिस के भी कुछ आदाब हैं। जब घर से चलें तो नीयत करके चलें मैं मजलिस से सैयद शहदा में जा रहा हूँ, और जब नीयत करके घर से चलें तो कहें कि अब ये सवाब जो मेरे लिए लिखा जा रहा है बहुत तेज़ी से, मैं अपने सवाब में अपने वालदैन को शरीक करता हूँ और मरहूमीन का सातीद का सबका नाम लें। अल्लाह के यहाँ सवाब की कमी नहीं है, वो सवाब सबको देगा। और जब चलें तो इंशाल्लाह आदाब के साथ किस तरह से चलें, चंद एक बातें कहूँगा इंशाल्लाह क्योंकि लास्ट मजलिस है, थोड़ी सी सुन लीजिए। तो जाने के हमें जब चलें तो वुदू करके चलें ताकि अहतमाम रहे कि हम मजलिस में जा रहे हैं, इबादत के लिए जा रहे हैं, इबादत में वुदू से आया जाता है। और फिर रूह की तहारत इन्हीं मजालिस में होती है, तथहीर यहाँ पर होती है, इंसान की रूह इस मजलिस में पाक होती है, गुनाह धुलते हैं और इंसान के बे इंतहा दो चीज़ें हैं। तवज्जो रखिएगा मेरे साथ, कुछ चीज़ें होती हैं अगर आप नामामाल में देखें ना, एक कलम होता है, कलम लिखने का काम करता है, और एक पाकुन होता है जिसे आप रबर कहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कहते हैं, जो मिटाने का काम करता है। अगर पहुँच रहे हो, कुछ चीज़ें लिखने का काम करती हैं, कुछ चीज़ें पाक करने का काम करती हैं, कुछ ऐसे नेकियाँ हैं जिनसे आपके नामामाल में सवाब लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे नेक आमाल हैं जिसकी वजह से गुनाह माफ किए जाते हैं। और कहा जाता है कि दुरूद सबसे ज्यादा जो सवाब है ना वो सलावात का है। सलावात में ये है कि उसमें सवाब भी लिखा जाता है, गुनाह भी माफ किए जाते हैं। और यही असर इन मजालिस का कि जब आप मजालिस के लिए चलते हैं तो जैसे ही चलना शुरू करते हैं सवाब भी लिखा जाता है और गुनाहों को भी महफ किया जाता है। जब आप मजलिस के लिए नियत करके चलते हैं अपने घर से कि मैं मजलिस से सैयद शहदा में जाऊंगा, तो फौरन बहुत तेज़ी से कुछ मलाइका दाएं तरफ वाले बहुत तेज़ी से लिखना शुरू कर देते हैं कि ये मजलिस में जा रहा है सवाब लिखने लगते हैं, और बाएं तरफ वाले वो जो गुनाह लिखते हैं ये गुनाहों को काटते हैं कि मैंने गुनाह लिखा था ये माफ़ कर दिया जाए, ये काट दिया जाए। तो उसको हुक्म हो जाता है कि तेज़ी से गुनाहों को काटना शुरू कर दो, मिटाना शुरू कर दो। तो जैसे ही मजलिस के लिए चलते हैं दोनों काम शुरू हो जाते हैं, नेकियों वाला नेकियाँ लिखना शुरू करता है और जो गुनाहों को लिखने वाला होता है वो गुनाहों को पाक करने लगता है। अज़ीज़ाने गिरामी मजालिस हैं, इनके असरात हैं। और अब क्या करें कि जब आ रहे हों तो दो बातों का खास लिहाज रखें, दो बातों की ताकीद करना चाहता हूँ। एक तो रास्ते में या तो अहले बैत पे दुरूद भेजते हुए आएँ, सलावात भेजते हुए आएँ, और जाते में भी सलावात भेजते हुए जाएँ, क्योंकि आते में भी इबादत कर रहे हैं, जाते में भी इबादत कर रहे हैं। बहुत से लोग बाज़ का सवाब को ज़ाया करने लगते हैं, उल्टे सीधे तबसरे शुरू कर देते हैं जिसकी ऐसे बाज़ का बातें ज़ाया हो जाती हैं, वो जो इंसान का सवाब लिखा होता है। और बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें तो गुनाहों की आदत पड़ चुकी है, अब इतना सवाब इतनी लंबी फहरिस्त कौन लेके जाए, तो फाड़ फूड़ के फेंक के जाएँ, वो शुरू कर देते हैं गीबतें करना, तो गीबत की वजह से वो इतनी जो लंबी उनको किताब मिली होती है सवाब की वो ज़ाया होना शुरू हो जाती है। बात वादे हो रही है, ज़्यादा बुरी तो नहीं लग रही है? अभी आखिरी मिनट से मैंने कहा इसमें पेश कर दूँ अभी। तो अब बहुत देखें जो सवाब की आपको मिली है ना, पूरी किताब मिली है, उसको साथ लेके जा रहे हैं तो उसको ज़ाया ना कीजिए। जिसकी आप गिबत कर रहे होते हैं ना, अगर मोमिन हो, अहले ईमान हो, अज़ादार हो, तो सारा सवाब उसे मुंतकिल हो जाता है। अब जिसे आप नुकसान पहुंचाना चाह रहे होते हैं उसी को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, तो इसलिए कोई किसी की गिबत ना करें। अब हमारे यहाँ कनाडा में एक साहब, कभी आपके बेटे की शादी कहाँ, कह लेंगे वो यहूदी से उसने शादी कर ली। वो क्यों, क्या हुआ? बेटे से पूछा, क्या कहेंगे? पूरे रस्ते मेरी वालदा खवातीन की बुराइयाँ करती हुई आती थी, वाले जो है मर्दों की बुराइयाँ। तो मैंने समझा कि शिया कम्यूनिटी के अंदर कोई अच्छे लोग तो हैं नहीं, तो फिर मैंने कहा बाहर ही से शादी कर लेता हूँ कहीं से, तो बच्चों पे असर ऐसे गलत ना छोड़ें कि जिसकी वजह से उनके दिल इस्लाम से, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों से दूर हो जाएं। इतनी अच्छी कोशिश कीजिए अल्फाज पेश करने की कि तमाम बच्चे उनके दिलों में दूसरे मोमिनीन की मोहब्बत बढ़ती चली जाए। ये बात वादे हो रही है जाने के राम? तो
تو اب یہ

देने वाले, उन सब के लिए एक एक हक हासिल है। तो जनाब सैयदा ने यही कहा कि बाबा फिर मैं हर हर रोने वाले की शफात कर रहा हूं, कोई भी जो रोने वाला होगा उसकी मैं शफात करूंगा। जनाब सैयदा के जुमले रिवायत छठे इमाम अलैहि सलाम से, मैं तफसील में नहीं जा सकता। दो जुमले जनाब अब्बास से मुतालिक भी पेश करना चाहता हूँ। जब जनाब अब्बास की ज़ियारत पढ़ते हैं ना तो उसमें जुमले कहते हैं, अस्सलाम अलैका या अबल फजल अब्बास इबन अमीर अल मोमिनीन। और बाज़ ज़ियारत तो बहुत मुफस्सल हैं कि जिसमें कहा कि अस्सलाम अलैका इबन अव्वल अल कौम इस्लाम वक़दम में ईमाना, कि जो सबसे मुकद्दम है ईमान के अंदर, इस्लाम में सबसे पहले हैं। लेकिन एक ज़ियारत के जुमले हैं, अलमुतीउ लिल्लाह वल रसूल ही वल अमीर अल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जुमले ये हैं, अलमुतीउ लिल्लाह, ए अब्बास आपने इताअत की है अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अमीर अल मोमिनीन की, इमाम हसन की, इमाम हुसैन की। जिसने इन पांचों की इताअत एक हस्ती में देखनी है वो अब्बास को देख ले। अब्बास इब्ने अली इताअत के अंदर सबसे आगे नजर आएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, सबसे मुश्किल काम जिहाद अकबर है। मैं आखिरी जुमले पेश कर रहा हूँ, उसके बाद फिर थोड़े से तफसील से मसाइल पेश करूँगा आखिरी मजलिस से। मैं जानता हूँ कि आज मैंने ज़्यादा सख्त बातें कही हैं, फ़ज़ाइल ज़्यादा पेश नहीं कर सका, लेकिन मुझे सारी ज़ियारत को जल्दी मुकम्मल करना था। अज़ीज़ाने गिरामी, कौन है जनाब अब्बास? मैंने कहा ना जिहाद अकबर ज़्यादा मुश्किल है, जिहाद असगर आसान है। जनाब अब्बास का मैदान करबला में जिहाद असगर जिहाद अकबर से अजमत बाजमत। कैसे? दो मुहर्रम को जब हुर ने कहा ना कि यहां से खैमे उखाड़ लें, तो जनाब अब्बास ने खैमे नस्ब किए थे, तो जनाब अब्बास ने एक जुमला कहा जनाब सैयदुश्शहदा से, कहा मौला आप इजाजत दें तो मैं इनको देख लूं, 1000 ही का तो लश्कर है। पता नहीं मैं बात को पहुंचा पा रहा हूं। शुजात जनाब अब्बास का, मौला सिर्फ 1000 ही का तो लश्कर है, इजाजत दीजिए मैं इन्हें देख लेता हूं। मुस्तनद तरीन रिवायत में पेश कर रहा हूं, अहले सुन्नत और शियों ने सबने जो लिखा है, सुनने वाले मोहम्मद आयतुल इश्तिहादी के जुमले के 4000 तीर अंदाजों ने सिर्फ रास्ता रोकने की कोशिश की थी फुरात पे पहुंचने के लिए, जो कम अज कम तादाद लिखी गई 4000 तीर अंदाज जो सिर्फ रास्ता रोकना चाह रहे थे। जब जनाब अब्बास ने एक मरतबा एड़ लगाई और मैदान में उतरे तो वो 4000 अफराद ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर के आने पे बकरियां भागती हैं। ये शुजात है जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की। अब जुमले सुनिएगा, तो जनाब अब्बास ने एक जुमला कहा, मौला इजाजत है, 1000 का तो लश्कर है, मैं इनको भी देख लेता हूं। तो जनाब सैयदुश्शहदा उस वक्त जनाब ज़ैनब के साथ बैठे हुए थे और बीबी को बता रहे थे कि मसायब क्या क्या आने वाले, और मौला अब समझ गए थे कि दिलासे देने का वक्त नहीं रहा, बल्कि जनाब ज़ैनब को बताने का वक्त है कि बीबी ने किस किस को संभालना है, कैसे कैसे संभालना है, किस किस की शहादत कैसे होगी, बाद में बीबियों का क्या आलम होगा, क्योंकि मौला जानते हैं कि सब शहीद हो जाएंगे। उस वक्त हर चीज़ की बचाने वाली हस्ती का नाम ज़ैनब कुबरा। तो अब मौला जनाब ज़ैनब के साथ बैठ के उन्हें समझा रहे हैं कि अब क्या क्या मसायब आने वाले, दो मुहर्रम है। तो अब क्या हुआ कि ये 9 मुहर्रम है, 2 मुहर्रम को जनाब अब्बास ने कहा ना मौला से, क्या कि मौला 1000 का लश्कर का नहीं, अब्बास आप खैमे उखाड़ लीजिए, का मौला इनमें इतनी जरूरत नहीं है कि हुसैन के खैमों को उखड़वा सके, ये आपका हुक्म है। का अब्बास मैं नहीं चाहता कि जंग की हमारी तरफ से पहल हो, कोई ये कहे कि हमने पहल की, अगर मैं बात को पहुंचा पा रहा हूं। अब जनाब अब्बास के जहन में एक बात बैठ गई कि हम पहल नहीं करेंगे। जब 8 मुहर्रम को उन्होंने हमला किया ना, या 9 मुहर्रम की सुबह, 9 मुहर्रम को जंग होना चाहती थी, तो उस वक्त जनाब अब्बास ने आने के बाद कहा कि मौला हमला हो गया। देखिए रिवायत अल्फाज बताती है, अंदाज नहीं, ये नहीं बताती कि कैसे कहा। मेरा दिल ये कहता है कि जनाब अब्बास खबर नहीं दे रहे थे कि मौला हमला हो गया, बल्कि इजाजत मांग रहे थे। ये नहीं कह रहे थे मौला हमला हो गया, बल्कि कह रहे थे मौला हमला हो गया, यानी आपने कहा था हम पहल नहीं करेंगे, अब उन लोगों ने हमला कर दिया, अब आपकी इजाजत है मैं चला जाऊं। अब क्या कहा जनाब सैयदुश्शहदा ने, कहा बे नफ्सी लकल वगा, मेरी जान आप पे कुर्बान,
یہ جملہ کسی سے نہیں کہا جناب.

0: में बड़ी तकलीफ है। क्या बेटा क्या बात है? क्या बाबा उसने बर्छी का फल तोड़ दिया। क्या अली अकबर इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा? मेरे हाथ को अपने बर्छी के फल पे रख दो। मैंने बहुत सोचा परवरदिगारा तूने कुछ देर के लिए नूर को क्यों छीना? क्या खलीले खुदा इब्राहिम ने आंखों में पट्टी बांध ली थी, क्योंकि बाप देख नहीं सकता बेटे को। हुसैन ने कहा परवरदिगारा मैं बगैर पट्टी के जाऊंगा। अल्लाह ने कहा नहीं हुसैन, मैं नहीं चाहता कि देखो। जवान बेटे का एड़िया रगड़ना बड़ा मुश्किल है। आखिरी जुमले सुन ले, बस एक मरतबा जब पहुंचेगा बेटा मेरे हाथ को बर्छी के फल पे रख दो, अगर देख सके मेरी तरफ। मैं आखिरी जुमले को पेश कर रहा हूं, मैंने शहादत नहीं पढ़ी, मैंने नहीं बताया कैसे शहीद हुए। एक मरतबा सैयदुल शहदा ने दोनों घुटने जमीन पर रखे, एक हाथ बर्छी के फल पे रखा, दूसरा सीने पे रखा, नजफ का रुख किया, कहा बाबा मेरी मदद को आना। मैं अली अकबर के सीने से बर्छी निकाल रहा हूं, बस बर्छी का खींचना था जनाबे ने पन्ने एड़िया रख ली। कहा बाबा अलविदा। अजरकुमल्ला मैंने तमाम कर दिया। एक मरतबा दो रिवायात हैं कि कैसे वापस लाए। एक रिवायत के अल्फाज है कि सैयदुल शहदा ने लाशा उठा लिया, दूसरे रिवायत के अल्फाज है आवाज या अतफाल बनु हाशिम एहमिलु अखाकुम, ए बनी हाशिम के बच्चों जरा आ जाओ, बच्चों आ जाओ जरा देखो मैं कैसे लाशा उठाऊंगा। आखिरी जुमले को पेश कर रहा हूं, मैंने तमाम कर दिया, ज्यादा तो लाने नहीं पढ़ूंगा, मैं जानता हूं बहुत से बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने आवाज दी, फूफी अम्मा क्या बात है, ये बीबियां खेमों से बाहर क्यों निकल रही हैं? क्या बेटा सज्जाद मैं खेमे का पर्दा हटाती हूँ, आप खुद देख ले। मौला कहते मैंने देखा मेरा बूढ़ा बाप एक लाशे पे झुका हुआ था, जब लाशे को उठाया बीबियां तड़पती जाती थी, सरों को पीटती जाती थी। अल्लाह
1: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون सबसे ज्यादा जनाब सैयद शहदा को जनाब अकबर से मोहब्बत थी। अब लोग आपके यहाँ मैंने देखा है बर्दाश्त नहीं कर पाते मसाहब की, इसलिए मैंने सख्त मसाहब नहीं पढ़े, मैंने छोड़ दिया आज। आए भी जरा हाथों को बुलंद कीजिएगा, मैं ज़रा एक मुख्तसर से दुआ करूँगा। बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, सबसे ज़्यादा छठे इमाम की हदीस को पेश कर रहा हूँ। पूछा मौला दुनिया की सबसे बड़ी खुशी किस चीज़ में होती है? तो मौला ने फरमाया दुनिया की खुशी इस बात में होती है कि इंसान का एक जवान बेटा हो और आंखों के सामने चलता फिरता रहे। तो जब भी एक बूढ़ा बाप जवान बेटे को देखता है ना तो बहुत खुश होता है। का मौला दुनिया के सबसे बड़े मसाइब क्या है? का जब वही जवान बेटा आंखों के सामने मर जाए। का ये दुनिया का सबसे बड़ा मसाइब है। एक बाप से उस बेटे की, माँ से उस बेटे के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। मैं सिर्फ यहाँ पे दुआ के लिए दो जुमले पेश करूँगा वास्ते के लिए। जब जनाब सैयद शहदा ने भेजा था ना तो दो बातें कही थी जनाब अकबर को। एक कहा था अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो तो बेटा मुड़ मुड़ के मुझे अपना चेहरा दिखाते रहना। रावी कहता है कि जब जनाब अकबर ने पलट के देखा ना जनाब सैयद शहदा को तो देखा जैसे जैसे जनाब अली अकबर की सवारी की रफ्तार तेज़ हो रही है वैसे वैसे इमाम हुसैन भी तेज तेज आ रहा है। जब तेज तेज आता देखा ना बाबा को तो फौरन जनाब अकबर ने आवाज दी का बाबा रुक जाओ मत आओ मेरे पीछे। तो जनाब सैयद शहदा ने एक जुमला कहा था अली अकबर तुम्हारा कोई अली अकबर जैसा बेटा जो नहीं है, तुम्हें नहीं पता मेरे कलेजे पे क्या बीत रही है। अली अकबर तुम नहीं समझ सकते कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है जब मैं तुम्हें भेज रहा हूं। परवरदिगारा उस लहजे का वास्ता जब जनाब सैयद शहदा भेज रहे थे और भेजने से पहले एक जुमला कहा था।

ये अखबार मुझे हमेशा से मैं देखा करता था, तुम्हारी माँ और फूफी सर पे तुम्हारे अमामा बांधते थे, दस्तार बांधते थे। मैं हमेशा कहा करता था एक ऐसा दिन आएगा मैं अली अकबर के सर पे दस्तार बांधूंगा। अली अकबर, आज मैं दस्तार बांधना चाहता हूँ। जनाब अली अकबर बहुत खूबसूरत और कदावर थे, अपने दोनों घुटने जमीन पे रखे, कहा बाबा आज आप अमामा बांध दीजिए। जब सैयदुल शहदा दस्तार बांधने लगे ना तो कहने लगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिकलाहि व तस्लीमन लिअम्रे। सैयदुल शहदा इन्ना लिल्लाह पढ़ के अमामा बांध रहे, जानते हैं शहादत के लिए भेज रहा हूँ। परवरदिगारा वास्ता जनाब अली अकबर की शहादत का, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा हमारे तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमा, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, मरहूमीन की मगफरत फरमा। परवरदिगारा सिर्फ एक वास्ता और दे रहा हूँ, हाथों को बुलंद कीजिएगा, एक दुआ का वास्ता दूंगा। परवरदिगारा किस दुआ का वास्ता है, जब जनाब मक्तलुल हुसैन में मरहूम मुकर्रम ने लिखा है कि जब जनाब सैयदुल शहदा ने दरे खैमा पे देखा ना कि कोई बीबी किसी बीबी के पांव नज़र आ रहे हैं, वो खैमे से देख रही है कि अली अकबर कैसे जंग करेंगे, तो सैयदुल शहदा वापस आए, कहा कि लैला मैंने अपने जद रसूल खुदा से सुना है कि माँ की दुआ बेटे के हक़ में कबूल होती है। लैला जाओ जाके अली अकबर के लिए दुआ मांगो कि एक मरतबा दोबारा मुझसे मिल ले। अब समझ में आया कि बेटा वापस क्यों आया था, किसी माँ ने दुआ मांगी थी। वो कहते हैं क्या दुआ मांगी मक्तलुल हुसैन पे, कहते जनाब लैला ने एक मुसल्ला बिछा के अपने बालों को बिखराया, हाथों को बुलंद किया और एक जुमला कहा का या रादा यूसुफ इला याकूब व इस्माइला इला हाजरा रुद्दू हो इलैया बिहक आतश अबी अब्दुल्लाह हुसैन। का ये दुआ मांगी का ओ इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, ओ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, हुसैन की प्यास का वास्ता एक मरतबा अली अकबर को बाप से मिला दे, एक मरतबा अली अकबर को लौटा दे। जब वापस आएगा बाबा मैं वापस आया हूं, जब एक मरतबा वापस आए अब मैं उसको नहीं पेश कर रहा। परवरदिगारा जनाब लैला की इस दुआ का वास्ता, परवरदिगारा इन तमाम मरीजों को शफा इनायत फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़माना की ज्यारत नसीब फरमा, हमारे गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना की ज्यारत नसीब फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बकी तामिर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा नजफ़ की, करबला की, सामर्रा की, काजमैन की, बलत की, शाम के तमाम रोज़ों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा ये अज़ादारी जो यहाँ पे कायम है इसको जारी और सारी फरमा। परवरदिगारा ये अज़ादारी इसी तरह से जारी रहे, कभी भी कोई इसमें रुकावट ना आए। परवरदिगारा एक और मैं दुआ पेश करूँगा, आखिरी दुआ पेश कर रहा हूँ। परवरदिगारा बहुत से ज़ायरीन ज़ियारत पे जा रहे हैं आज रात, अगले दिनों में अरबईन पे जा रहे हैं, परवरदिगारा तमाम ज़ायरीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमारे जितने भी ज़ायरीन जहाँ जहाँ से आ रहे हैं, इस वक्त हालात बहुत सा ख़राब हैं, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, परवरदिगारा तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। इन ममालिक के अंदर जितनी मसाजिद इमामबरगाहें हैं, खुसूसन ये जो इमामबरगाह की, परवरदिगारा तरक्की इनायत फरमा, खिदमत करने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा ये असदारी इसी तरह से परवरदिगारा कायम रहे, हमारी नस्लों में असदारी मुंतकिल होती रहे। परवरदिगारा हम सबको ईमान पे मौत इनायत फरमा, हम सब की आकबत बखैर फरमा, हमारे मरहूमिन के दराजात को बुलंद फरमा, हम सबको हमारे मरहूमिन को परवरदिगारा जनाब सैयदुल शहदा की शफात नसीब फरमा। जितने ज़ायरीन जितने भी ज़ियारत कर चुके हैं उनकी ज़ियारत कबूल फरमा, और जिन्होंने अब तक ज़ियारत नहीं की सबको जनाब सैयदुल शहदा की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा हमें बार बार सैयद शहदा की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा उस बहन का वास्ता जो शाम से चल के आई थी भाई की ज़ियारत के लिए, परवरदिगारा हमें बार बार इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक मुहम्मदिन।

ही है, देखो जरा गौर करो, चारों तरफ आग है। ये किस तरह की आग कह रही है? क्या हम लोग पुरसुकून हैं? झगड़े, खानदानी झगड़े, भाई भाई में झगड़े, फैमिली झगड़े, इतनी बड़ी आग है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये सब आगों को बुझाने वाली चीज़ है कुरान और अहले बैत अलैहिम अफजल सलात व सलाम। अजल फरज। तो अगर बाप एक आयत पढ़े तर्जुमे के साथ टेबल पर, डिनर टेबल पर, माँ एक आयत पढ़े तर्जुमे के साथ, बेटा एक आयत पढ़े, बेटी एक आयत पढ़े, यकीन कर लें जिस घर में कुरान की हुकूमत होगी वहाँ शैतान हुकूमत नहीं कर सकता। जिस घर में कुरान की हुकूमत होगी वहाँ शैतान का उरूद नहीं होगा। इसीलिए इस किताब से क़ुरबत, जब कभी अपनी महफिल में खुसूसन मोमिनीन में शियों में बयान करता हूँ तो लोग ऐसे करते हैं जैसे सुन्नी बैठ गया है मेंबर पर। जी, कुरान का ताल्लुक जितना आप से है किसी और से नहीं है, इसलिए कि कुरान और अहले बैत जुड़वान हैं, इंटरट्वाइन हैं, इनको कोई जुदा नहीं। लाइन या तरीका, सरकार ने कह दिया कि नेवर नेवर बी सेपरेटेड, ये दोनों कभी जुदा होने वाले नहीं हैं। जहाँ कुरान है वहाँ अहले बैत हैं, जहाँ अहले बैत हैं वहाँ कुरान है। हत्ता सर कटने के बाद भी तिलावत बता रही है कि हमें जुदा नहीं किया जा सकते, यू कैन नॉट सेपरेट अस, ये दोनों साथ हैं। तो जब ये यकीन कर लें तो हमारे पास ये यकीन होना चाहिए कि ये कुरान का एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ सच है। जो कुरान कह रहा है वही होगा, उससे हटकर कुछ नहीं होगा। ये यकीन हो जाए तो फिर हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है। और दूसरा यकीन ये करें कि हमारे तमाम प्रॉब्लम का हल कुरान ने, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया है। एक जुमला मैं कहता हूँ, ये जुमला अशरा चाहिए इसके लिए, अहले बैत ने मुश्किल कुशाई कर दी है। यानी हर वो प्रॉब्लम जो आपकी हमारी ज़िंदगी का है उसका सलूशन बता दिया है। नहीं मालूम है तो मुझे नहीं मालूम है, तो मुझे इल्म हासिल करना चाहिए ताकि मैं अपने मुश्किल को दूर कर सकूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। इंसान गिरफ्तार है, इंसान जो है चेंड है। वजअलना फी अअनाकहिम अगलालन फहिया इलल अदखान फहुम मुकबहून, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फहिम सद्दन फअख्शैनाहुम फहुम ला यबसरून। हम लोग चेंड हैं, हम लोग जो हैं जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये जंजीरें लोहे की होती कट जाती हैं, ये जंजीरें फिक्री जंजीरें हैं, इनका काटना बहुत मुश्किल है। चुनाचे हमारे पास बाज़ चीज़ें अकीदे ऐसे हैं, मेरा गला कट जाए भी तो मैं इसको हटूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं, मेरा ये अकीदा ये है। हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन करते हैं, ये खुद एक जंजीर है। जंजीर ये है कि मैं कहूँ यही है ना। अगर ओपन माइंडेड हैं तो आप हमेशा ये देखेंगे कि आज अगर नया इन्फॉर्मेशन सच्चा मिला है उसको मैं अपनाऊँ, उसको मैं अडेप्ट करूँ। ये है प्रोग्रेसिव थिंकिंग। इंसान इस्लाम सिखाता है, आज कोई चीज़ अच्छी मालूम हुई किसी भी मौलवी से, किसी भी खतीब से, किसी भी आलिम से, उसको अडेप्ट करने की कोशिश करूं। अगर ये कुरान और अहले बैत की टीचिंग में से है, अगर ये फिक्र नहीं रही तो कभी हम बदलने वाले नहीं हैं। अल्लाह से दुआ करें इंशाअल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे के इस कुरान से करीब हों, और हमारे तमाम मुश्किलात का हल इन दोनों ने बयान कर दिया है, कुरान और अहले बैत ने। इंशाल्लाह ये मजालिस जो आज के इस साल का टॉपिक है उसका हल भी हम पेश करने जा रहे हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। ये थिंकिंग और थॉट्स की जो जंजीरें हैं, सो मेनी आप जानते हैं, बहुत किस्म की जंजीरें हैं, बहुत ये शाकल्स कहते हैं, इनका तोड़ना जो है बहुत मुश्किल है। उनमें से दो शाकल्स बहुत ख़तरनाक हैं, दो जंजीरें बहुत ही ख़तरनाक हैं। एक माजी की जंजीर है, एक मुस्तकबल की जंजीर है। माजी में जो कर दिया है उस पर बहुत ज़्यादा इंसान उलझा हुआ है, जो हो चुका है, जो वाक़यात हो चुके हैं उस पर बहुत, ये क्यों हुआ, मुझे ये नहीं करना चाहिए थे, ये क्या हुआ, ये

क्या हुआ, मुझे ऐसा करना चाहिए था, इसमें बहुत उलझ जाता है पास्ट में, ये बहुत खतरनाक जंजीर है। उसी तरह से फ्यूचर में वो उलझा हुआ है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। इस्लाम ये कहता है कि हालत हाल में, लिविंग इन द प्रेजेंट इज द लाइफ, तुम आज की जो हालत है उसको एंजॉय करो, ना माजी से कोई डरो ना आइंदा परेशान हो जाओ, आज तुम्हारे हाथ में जो आज है इसको रोशन करो, इसको जिंदा करो, इसको मोहकम करो। ये आयत देखिए कितनी खूबसूरत है।

उसको एंजॉय करो, ना माजी से कोई डरो ना आइंदा परेशान हो जाओ। आज तुम्हारे हाथ में जो आज है इसको रोशन करो, इसको जिंदा करो, इसको मुहकम करो। ये आयत देखिए कितनी खूबसूरत है, सूरह हदीद कुरान का 57 चैप्टर है, उसकी 23वीं आयत है। आजकल आपके पास माशाल्लाह एआई के ज़रिए से बेहतरीन तफसीर, मैं आपको बताऊँ, आप लोग सब के लिए हमारी फर्स्ट हम लोगों को करना चाहिए तर्जुमे से कुरान कंप्लीट करना चाहिए। वंस वी कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन, सेकेंड स्टेप है तफसीर नूर, हमारे उस्ताद मोहसिन कराती की खूबसूरत है। उसमें ना फलासफ़ी है ना बहुत ज़्यादा गहराई है, सिंपल लॉजिक है। पहले उन्होंने निकात ईच एंड एवरी आयत के पॉइंट हेड पॉइंट्स को बयान किया है, उसके बाद उसको नतीजा पैगाम क्या है इस आयत का, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द आयत, उसको बयान किया है। मौलाना हम कहाँ से लाएँ, आप ऑनलाइन में जाइए, आपको एआई के ज़रिए से तफसीर नूर मिलेगी और उसी पेज को आप इंग्लिश में आजकल ट्रांसलेशन करना, गुजराती में, उर्दू में प्रॉब्लम ही नहीं है। 5-10 साल पहले एक बिग प्रॉब्लम था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आसान होता चला जा रहा है। मगर हम लोग इस गैजेट को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर इसी गैजेट को इल्म के लिए इस्तेमाल करें बहुत नूर इल्म से रोशनास हो सकते हैं इंशाअल्लाह। आयत देखिए कितनी खूबसूरत है, सूरह हदीद की आयत है, लिखैला तअसौ, और मौला अमीर अल्मोमिनीन अमीर कलाम अलैहि अफ़ज़ल सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि ईमान मोमिन इस आयत में आ जाना चाहिए। ये सिंबल ऑफ जोहद है, जोहद यानी इंसान का अब्सटेनेमियसनेस, जो किससे मुझे दूर रहना चाहिए अगर सीखना चाहे जोहद को, उसके लिए बेहतरीन है मोमिन इस आयत में आ जाना चाहिए। लिखाई ला तअसौ अला मा फातकुम, जो गुजर गया है उस पर रो नहीं, उस पर अफसोस मत करो, तअसौ उस पर अफसोस मत करो, वला तफरहु फीमा आताकुम, और आइंदा आने वाला क्या है उससे भी ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आयत बता रहा है, ये ना पास ना फ्यूचर, प्रेजेंट को खूबसूरत बनाओ, इन अ लिविंग इन द प्रेजेंट के लिए इससे खूबसूरत आयत नहीं। सलावात पढ़िए, हालत हाल में जीने का सलीका जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक हम लोग परेशान रहेंगे। हमारे घरों के झगड़े, हमारे नौजवानों के प्रॉब्लम्स, हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स, हमारे सेंटर्स के प्रॉब्लम्स, इन तमाम का हल जो है आज है। वह आज को बेहतर कैसे बनाया जाए, मैं चूँकि 8 दिन खिदमत में हूँ आप लोगों की, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन कोई ना कोई एक पॉइंट पर हम फोकस करें, उसको समझने की कोशिश करें। आज हमारी जहन तमाम हमारे यानी दुनिया भर के इंसानों के जहन जो हैं फोकस्ड हैं मिडल ईस्ट पर, और हर एक आदमी उलझा हुआ है कि मुसलमान भी कह रहेगा क्या हो रहा है, गैर भी कर रहा है ये क्या हो रहा है, पावरफुल कंट्री ये कह रहा है कि ये होगा हम ये कर देंगे, हमें ये देखना कि आया वो कर देगा तो हो जाएगा। कुरान ये कह रहा है तुम्हारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि इरादे परवरदिगार हासिल। सलावात पढ़िए मोहम्मद पर जहाँ बात चीज़ें हम लोगों को दूर कर दी गई हैं, और एक बहस ये जो हालत है आज की मिडल ईस्ट की, आज की नहीं है, थोड़ा सा ओपन करो मैं ज़रा सा, पता चलेगा आपको कि इसका रूट कॉज क्या है आज के हालात। इनकलाब आया ईरान में 1979 में, और इनकलाब की तैयारियां जो थे 79 नहीं है, 200 साल पहले से, 1000 साल पहले से, ये टीचिंग्स ऑफ कुरान और अहले बैत के नतीजे का नाम है इनकलाब। बहुत बड़ा जुमला कह दिया, अगर जी अगर समझना चाह रहे हैं इस इनकलाब को, यानी कुरान और अहले बैत की टीचिंग का नतीजा है, जिसको इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने नजफ में 13 ईयर्स दरस खार

किताब तहारा से किताबुल विरासा तक 48 बुक्स हैं, किताब तहारा से लेकर के किताबुल विरासा, विरासा के माने इनहेरिटेंस के मसाइल, ये सब कितने की बुक हैं, 48। ये पूरे कहाँ थे, हौजे में बहस व मुबाहसे में थे, समझने की कोशिश कीजिए, जितने भी अहकाम थे बहस व मुबाहसा में थे। इमाम खुमैनी ने बहस से उठा करके बिल्डिंग बना दिया। ये जो इनकलाब जो लाया है, अब दीन जो है सिर्फ बहस व मुबाहसा का नहीं है, बल्कि ये दीन चलाना है सोसाइटी में। मैं मिसाल देता हूँ, जब ईरान में मैं था 79 से पहले, इनकलाब से पहले, उस वक्त शाह ईरान की हुकूमत थी, शराब आम थी, सुअर का गोश्त मिलता था, कैबरेज थे, हर डांस, हर तरह की गंदगी मौजूद थी। पूरे मौलवी बोले थे नमाज पढ़ो, पर्दा करो, हज करो, ज़कात कर दो, सारे मौलवी। मैं जब पढ़ता था 18,000 हौज़े इल्मिया में उलमा पढ़ रहे थे, मुमकिन के 30-40 हज़ार मौलवी हजरत पूरे ईरान में यही कह रहे थे कि नमाज रोज़ा। इमाम खुमैनी ना नमाज को बोला, ना रोज़े को बोला, ना हज को बोला, ये बोला कि तुम्हारा दुश्मन कौन है उसको पहचानो। जब उसको पहचान लिया तो दाढ़ी भी आ गई, नमाज भी आ गया, रोज़ा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर इस इनकलाब को समझना है कि जो जो दीन किताबों में था, इमाम खुमैनी ने उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ला दिया। ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब अगर आप, मैं कोई बात पढ़ा रहा हूँ किसी क्लास में, किसी जगह दीन को जो पढ़ा रहा हूँ, ये दीन का एक हिस्सा है। जब तक ये दीन मुआजमे में नहीं आएगा, वो दीन नहीं रहेगा। इस दीन को लाने वाले का नाम है। तो हमारी ज़िंदगी में दो मौजूज़े हुए, मैंने आखिरी जो जुम्मे का खुतबा दिया है टोरंटो में, रमज़ान मुहर्रम के लिए जो निकल रहा था, मेरी ज़िंदगी में दो मौजूज़े हुए। एक इनकलाब ईरान इमाम खुमैनी के हाथ में, इस इनकलाब को मेराज तक पहुँचाया शहीद उम्मत। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो डोंट लूज मी, आज की हमारी बहस, हमारा मौजू है लिविंग इन दी प्रेजेंट, हालत हाल में। क्यों मैंने ये इस बहस को छेड़ा, इसलिए कि मुब्तला बे हम लोग कहते हैं जब कोई बहस करते हैं, इंसान जिसमें एक्यूपाई हो जाता है उस बहस को कहते हैं मुब्तला बे। आज तमाम न सिर्फ मुसलमानों के जहन, सारे इंसानों के जहन। मैंने 25 साल पहले हुसैन ज़हरा में मजलिस पढ़ते हुए कहा, आप लोग यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले ज़रा सा होशियार रहिए, कहीं एक पटाखा उड़ेगा अभी तो शायद यहाँ पर हालात तबाह हो जाएगी। उसे उतरने के बाद मौलाना आप बहुत प्रेडिक्ट करने लगे। नहीं भाई, मैं इससे मेरे जहन में बात आई है कि आप लोग ज़रा सा होशियारी से यहाँ पर काम कीजिए, इसलिए कि अपने ही अंदर एक दुनिया बनाने का नाम दीन नहीं है। दीन एक वाइडर कायनात का नाम है। उस वाइडर कायनात को इस्लाम ने इतना वसी बनाया था, इसको हमने महदूद करके कौमों में बांट दिया। हमसे पूछ रहे थे अली ने क्यों जंग की जमल में, क्यों जंग की सिफीन में, क्यों जंग की नहरवान में। उस वक्त समझ में नहीं आया, आज समझ में आ रहा है। जो लोग मुसलमान, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो इस्लाम मुसलमान मसाजिद माशाल्लाह, इस सबसे बड़ी खूबसूरत मस्जिद कहीं कहीं कहा जाता है अबू धाबी में है, बे इंतहा माशाल्लाह हज़ारों आदमी पढ़ सकते हैं। मस्जिद का बनाना और है, मस्जिद का क़याम और है, नमाज का पढ़ना और है, नमाज का क़याम करना और है। इस्लाम ने नमाज पढ़ने की दावत नहीं दी है, अकीमुस्सलात कहा है, नमाज को कायम करो। कायम जो किया है ये इस इनकलाब ने किया। सलावत पढ़िए मोहम्मद। अज्जिल फरज। आज तीन पावर नहीं है दुनिया में, एक अमेरिकन पावर है, एक चाइना का पावर है, एक रशिया का पावर है। तीन पावर का नाम लिया जाता था। इस जंग के बाद अगर कोई पावर का नाम लिया जा रहा है, वो है इस्लाम का पावर। और एक ही इस्लाम है, 72 इस्लाम।
तलवार बढ़िया मोहम्मद वाले।

0: मुझे डर है कि कूफे वाले मुस्लिम के दौर की तरह सिक्कों की लालच में मुख्तार को अकेला ना छोड़ दें।
1: थोड़ा सब्र से काम लो नारिया, जरा अच्छी बातें भी सोचा करो। तुम उलट क्यों नहीं सोचती? क्या पता कूफे वाले हजरत मुस्लिम के वाक़े से शर्मिंदा हों और अपनी खयानत की तलाफी करना चाहते हों।
0: खुशफहमी है, जंग हो गई तो सब बिलों में छुप जाएंगे। मुख्तार को जरा सी भी समझ होगी तो कूफियों से अपने आप को बचा लेगा।
1: नारिया, मुख्तार के पास अजम भी है।
0: अरब के तमाम बासर कबाइल ने कूफे की नाकाबंदी कर दी है, क्या मुख्तार मुट्ठी भर कमजोर अजमों के साथ इनका मुकाबला कर सकेगा?
1: इब्राहिम अश्तर और उसका कबीला शेरों की तरह मुख्तार के साथ खड़े हैं।
0: ये सारी आग अश्तर और उनके बेटे की कब्र से उठ रही है, उसी की वजह से जंग का आगाज हुआ है।
2: आ गए हमारे शेर, आ गए, उनका लश्कर कूफे में आ गया।
1: किससे सुना तुमने?
2: मैंने सुना नहीं है बानो, अपनी आंखों से देखा है। इंसान के पीछे इंसान, सबके पीछे सब। लश्कर का एक सिरा दरवाजे कूफा पर और दूसरा सिरा बाग ज़ाहिदा पर। क्या रोब दबदबा है, कूफा अपने बहादुरों के कदमों तले थरथरा रहा है। अगर अपने कानों को जमीन पर रखेंगी तो कदमों की आवाज आएगी।
0: एक बात तो बताओ, क्या तुम वही औरत नहीं हो जिसने अपने कबीले की औरतों को लेकर उमर साहब को पत्थर मारे थे?
2: जी हाँ मानो, मैं वही हूँ। ऐसा काम किया कि उमर शर्म के मारे सर ना उठा सके। हमने उसे घर में बैठने पर मजबूर कर दिया ताकि मुख्तार का बोझ हल्का हो जाए।
0: ये लीजिए बानो, ये उसी लश्कर का ऊँट है जिसने इब्न मरजाना की शातराना चाल का साथ दिया और माँ का यतीम मुस्लिम मारा गया। शक नहीं कि ये यहाँ भी मुख्तार का काम खराब करने आई है।
1: तुम्हारी जबान की तलखी शिमर की तलवार से कम जहरीली नहीं है नारिया, क्यों उसे मुस्तकिल ढोंगे मार रही हो?
2: उमरा बानो, आपकी सौकन को हक पहुँचता है कि मुझे तंस मारे। मुझ कमबख्त ने हजरत मुस्लिम के मौके पर वो गुनाह किया था कि अब तक उस पर कुढ़ रही हूँ और चल रही हूँ। मेरा शोहर तो तवाब बन गया और अनुवर्ता में शहीद हो गया। मैं नसीब की मार जमाने की इबरत बनकर जिंदा रह गई हूँ।
1: ये कैसी बात कर रही हो? हम सब धोखा खा सकते हैं और गुनाह कर सकते हैं। शैतान का काम भी यही है, तौबा जहाद का दर्जा रखता है। तुमने अच्छा किया हमें आकर खबर दी, हम तुम्हारी मजीद अच्छी खबरों का इंतजार करेंगे।
2: माफ कीजिएगा उमरा बीबी, आपकी बदअखलाक सौकन की बहुत ही जहरीली जबान है। ध्यान रखिएगा कि उमर साहब की कमी को पूरा न कर दे। हम औरतें शेरों की तरह मुख्तार के साथ खड़ी हैं।

0: अब्दुल रहमान, तीरंदाजों को देख रहे हो?
1: हाँ, देख लिया था मैंने।
0: इन्हें खत्म करना तुम्हारा काम है। अपने तीरंदाजों को ढालों के हिसार में छुपाओ और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी पूरी तवज्जो दुश्मन के तीरंदाजों पर होनी चाहिए। जैसे वो तीर मारने के लिए उठे, उन्हें मार दो। खुज़ैमा, तुम 100 घुड़सवारों को उठाओ और उनके घुड़सवारों को टिका दो।
1: 100 घुड़सवार कम नहीं होंगे भाई, हमारे पास 300 घुड़सवार हैं।
0: मैदान बहुत छोटा है खुज़ैमा, सबके सब चल पड़े तो दरो दीवार से टकरा जाओगे। मुझे डर है कि तुम लोग फंस ना जाओ। अब्दुल्ला, खुज़ैमा के 100 घुड़सवारों के अलावा बाकी घुड़सवार घोड़ों से उतर जाएं।

0: डरो मत हुस्न की मलका।
1: तुम्हें खुदा की कसम है, तुम सच बताओ कि तुम कौन हो?
0: मैं हूँ मारिया, आपके बिल्कुल बराबर वाली पड़ोसन।
1: तुम यहाँ क्या कर रही हो औरत, और ये कैसा अजीब सा हुलिया बनाकर घूम रही हो?
0: शिम्र के सिपाहियों जैसी लग रही हूँ ना।
1: तुम्हारा प्यारा शोहर उर्मला का लंगोटिया यार है, तुम शिम्र के जैसी हो गई हो ताकि उसका साथ दे सको।
0: नारिया तुम वाकई बेवकूफ हो या लोगों को बेवकूफ बनाती हो?
1: बकवास बंद, मैंने पूछा मेरे घर में क्या कर रही हो तुम?
0: ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है शहजादी, ये पयाम का घर है।
1: दिन दहाड़े सितारे दिख रहे हैं, तुम कुछ ज्यादा ही बोल गई घटिया औरत, तुम्हारा कियाम से क्या वास्ता?
0: ज्यादा शोर मत करो बाजार की मक्खी, मैं बर्दाश्त का मादा नहीं रखती, जो मुझे डंक मारती है वो बहुत पछताती है।
1: वाकई ज्यादा बोल रही हो टिड्डी, लगता है तुमने अपने से ज्यादा भाड़ी नहीं देखी।
0: उम्रा बीबी आप हमारे बीच फैसला कीजिए, हम एक दूसरे की जबान नहीं समझते, जब भी टकराते हैं एक भौ भौ करता है एक म्याऊं म्याऊं।
2: जाहिर है जो भी तुम्हें सूलिए में दिखेगा उसका रंग बदल जाएगा, थोड़े से धब्बे भी अपने चेहरे पर लगा लेती तो शिमर और तुम में कोई फर्क न रहता।
0: मैं क्या करती, मैं सिर्फ इसी लिबास में कियान का पैगाम अपने शोहर तक पहुँचा सकती थी।
2: अच्छा अच्छा, इससे पहले कि कोई शर खड़ा हो जाए जाओ अपने कपड़े बदल लो, जाओ।
0: नारिया मैं मारिया हूँ, मैंने तुम्हें डराया, माफ करना डरपोक बुढ़िया।

0: क्या तुम्हें मेरे सर पे सिंह नजर आ रहे हैं?
1: फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया?
0: अगर यही चलता रहा तो शायद पागल भी हो जाऊं। यह हो क्या रहा है? ये आफत हमारे घर में क्या कर रही थी?
1: मारिया, कल तक आफत जरूर थी नारिया, मगर आज वो और उसका शौहर कयाम की खास तरफ

0: अरुण से है।
1: हाँ, पहले ही हालात बड़े सुहाने थे जो इन जैसे लोग भी आ मिले। इस औरत का शौहर और मनाकर लंगोटी यार है और इसकी बीवी भी खबीस तरीन औरतों में से है।
0: ये हुनर एक नया है, गलत लोगों को भी मुतियों फरमाबरदार बना देता है।
1: क्या मुख्तार मजबूर है शमर से जंग के लिए? उसे भी अपने हुनर से इंसान नहीं बना देता।
0: हुनर कयाम से वो इंसान बन सकता है जिसके हाथ खूने हुसैन में रंगे हुए ना हो, इब्ने हुर की तरह जो मारिया का शौहर है। इब्ने हुर हुरमरा का दोस्त जरूर था मगर वो करबला में नहीं था।
1: जी हाँ, ये औरत और उसका शौहर क्या करना चाहते हैं? कियान का क्या पैगाम था?
0: वो कियान के हंगामी हमला आवरों के गुरु का सरदार है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये लोग शिमर के सिपाहियों के लिबास में उनके तीरंदाजों के दरमियान घुसकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं।

0: मेरे साथियों, इनकी तादाद से मत घबराना, जो कि सिर्फ कुछ डरपोक और बुजदिल लोग हैं। तुम्हारा एक मर्द उनके 10 मर्दों पर भारी है।
1: शिकार हो गया, अब हमें भाग जाना चाहिए।
2: हमें गिरोह दर गिरोह हमले करने होंगे, उन्हें कदम बकदम पीछे धकेलना होगा ताकि घुड़सवारों को रास्ता खुले। अहमद, तुम हमला करो।

अकबर, अल्लाह अकबर, मैंने राशिद को मार दिया, अयास के बेटे को मार दिया, अल्लाह अकबर।

0: बाजार में मछली बेचने से थक गए थे जो हंगामा आराई करने लगे। तुम्हारे आका ने तुम्हें इसलिए आजाद किया कि उस पर तलवार उठा लो नमक हराम। ले जाओ फौरन इसका सर उड़ा दो।
1: तुम अपनी माँ के नाजायज बेटे हो शबस, अगर ऐसा ना करते तो तुम शबस ना होते मलाऊन। जो अहलियत रसूल अल्लाह के कैदियों पर रहम ना करे वो एक आजाद किए हुए गुलाम पर क्या रहम करेगा।

0: अमीर पानी क्यों नहीं पी रहे बिन कामिल?
1: मेरे ख्याल से रोजा होगा उनका।
0: रोजा, वो भी इस जंग के मौके पर? अगर रोजा न रखते तो बेहतर होता ना।
1: बिन खुदैज, अबू इसहाक को क्या करना है वो हमसे बेहतर समझता है।
2: बेहतर होगा तुम्हारी ये खबर ना फैले अबू सईद। बिन कामिल,
1: जी अमीर,
2: फौजों को रवाना होने का हुक्म दो, हमें जल्द से जल्द बिन अनस के पास पहुंचना होगा।
1: कुछ हुआ है क्या?
2: बज़ाहिर बिन अनस किसी मुश्किल में है। कियान कहाँ?
1: यहीं कहीं होगा।
2: उसे बुलाकर लाओ, फौरन इब्राहिम को यह खबर पहुंचानी होगी।
1: जी अमीर।

0: तुम आ गए शिम। शेर बने या लोमड़ी?
1: हम चंद बुजदिल गीदड़ों को लेकर भेड़िए के मुकाबले को गए थे। जरा से हमले में डर के फरार कर जाते हैं। हैफ उन तलवारों पर जो इन डरपोक लोगों के हाथों में हैं।
0: तो तुम भी चंद हंगामा आराई करने वालों से मगलूब हो गए?
1: दुश्मन इन बातों से काफी ज्यादा ताकतवर है अमीर, उसे बहुत मामूली समझ लिया है आपने।
0: तुम लोगों की तादाद दुश्मन से 3 गुना ज्यादा है शिमर। तुम लोग अरब के मशहूर और बहादुर जंगजू हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को कि चंद गुलामों के मुकाबले पर इस तरह आजजी का इजहार कर रहे हो?
1: अमीर, मुख्तार के साथियों ने हमारे रूप धार लिए हैं। छतों पर मुकर्रर तीर अंदाजों ने एक तीर भी नहीं चलाया। जानते हैं क्यों? मुख्तार के आदमी हमारे लिबास में उनमें शामिल थे और उन्हें मार भगाया।
0: शबस की भी मिली जुली कैफियत होगी। वो क्यों मगलूब नहीं हुआ दुश्मन के आगे?
1: वाकई शबस ने मुकाबला कर लिया?
0: शबस ने मुकाबला किया है, उसने दुश्मन को मार भगाया।
1: शाबाश है उस पर। राशिद ने क्या किया?
0: राशिद बाप का दुख झेल ना सका, गया अपने बाप के पास।
1: मारा गया?
0: हाँ, मगर एक जबरदस्त जंग लड़ने के बाद। अगर मेरे पास राशिद और अयाज जैसे 10 सिपा सलार होते तो मैं मुख्तार को मक्खी की तरह मसल के रख देता। बेशक ये बाप बेटी वफादार सिपा सालार थे।
1: यानी हम वफादार नहीं हैं? बेवफाई दिखा रहे हैं अमीर? हमें भी राशिद और उसके बाप की तरह मर जाना चाहिए था कि हमारी वफा साबित हो जाए।
2: मैं माफी चाहता हूँ, ये इन बहस मुबाहिसात का वक्त नहीं है। शबस ने दिखा दिया कि मुख्तार को हराना नामुमकिन नहीं। हम एक इज्तिमाई अज़्म के साथ मुख्तार की कमर तोड़ सकते हैं।
0: तोड़ दो, तोड़ दो। अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ दो, वरना वो तुम लोगों की कमर तोड़ देगा।

0: मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है।
1: ये सब क्या है? झूठ है? इस बेचारे के साथ क्या किया है?
2: उमरा बीबी, ये खबीस शबस का जासूस है, यहाँ भटक रहा था कि मोहल्ले की खबरें पहुँचा सके।
0: ये झूठ है, खुदा रसूल की कसम ये झूठ है।
2: अरे अरे दीदा दिलेरी तो देखो, अभी मैंने इसका मुंह खुलवाया था। शबस मुख्तार के मोहल्ले पर हमला करना चाहता है, इस ढांचे को उसने भेजा है ताकि मोहल्ले को आग लगवाने में उनकी मदद करे।
1: इसकी हुरिये से नहीं लगता कि ये जासूसी के लिए कोई काबिल आदमी होगा।
2: उसने खास तौर पर इस ढांचे को भेजा है ताकि

0: हमें धोखा दे सके। बताओ कितने काले सिक्कों पर बिके हो बदबख्त कहीं के?
1: आप लोग जिस किसी को भी मानते हैं उसकी कसम, ये झूठ है। मैं किसी का जासूस नहीं हूँ।
0: नहीं, इसे प्यार की जबान समझ नहीं आएगी। लाल कोयलों से इसकी आंखें जलाएंगे तो इसकी जबान खुल जाएगी। एक कोयला लाना जरा। अच्छा बस करो,
2: इस बेचारे को मजीद तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। तुम किस गुरु की हो?
0: मैं साहिब इब्ने मालिक के जनाना दस्ते की औरतों में से हूँ बानो।
2: फौरन साहिब के पास जाओ और उसे बता दो कि शबस का ये इरादा है, जल्दी।
0: जी अच्छा बानो, लेकिन आप इस दुमकटे को रिहा मत कीजिएगा। शबस बहुत चलाक है, उसके हीले और धोखे कमर तोड़ हैं।
2: ठीक है, जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए।
0: चलो आओ।
1: खुदा किसी काफिर को भी औरतों का कैदी ना बनाए। खुदा की कसम बानो, मैं बेगुनाह हूँ। खामखा मुझ पे शक किया जा रहा है।
2: खामोश हो जाओ, बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसे थोड़ा पानी दो, डरा हुआ है।
3: ये क्या कर रहे हो?
4: हम पर पीछे से हमला हो गया है। उनका सिपाही सलार बिन उचा जुबेरी है।
1: बिन कामिल, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कैसी आराइश है?
3: हम पर पीछे से हमला हो गया है अबू साहब। उनका सिपाही सलार बिन उचा जुबेरी है, हमें घेर लिया गया है।
5: पीछे का रास्ता खोल दो, अपनी फौजों को पीछे ले जाओ।
3: ये अमीर
1: ज्ञान ज्ञान,
5: फौरन इब्राहिम के पास पहुंचो। उसे कहो दारुल हुकूमत के मैदान की तरफ ना जाए। बिन हजाज जुबैरी ने हम पर पीछे से हमला कर दिया है। इब्राहिम उसके पीछे से उस पर हमला करे।
4: मतलब हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए।
5: बहुत बुरा शुभ हालात है।
6: साहिब, उनके प्यादे तुम्हारे लिए, मैं इनके घुड़सवारों से निमटता हूं। सारे घुड़सवार उतर जाएं।

0: पाकिस्तान के बेटे किसी खून का बदला ले रहे हो या मेरे और तुम्हारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी है?
1: इस मौके को याद रखना बुजदिल, अगर तुम में गैरत है तो जाओ और हमारी बहादुरी के किस्से सुनाओ, जाओ।
2: इब्राहिम।
1: हाँ, क्या ताजा खबरें हैं कियान? मलून शबस अब तक जिंदा है क्या?
3: अबू इसहाक दुश्मनों

0: रुक जाइए, मस्जिद आगे मत जाइए, वापस आ जाओ, असल दुश्मन तुम्हारे पीछे है।
1: अल्लाह अकबर, इब्राहिम आ गया।
2: बिन कामिल,
3: जी अमीर।
2: बिन कामिल, पिछला रास्ता भी खाली ना करना, पता तो यह है कि हम दुश्मन को घेर लें, कहो सब वापस आ जाए।
3: जी अमीर।
2: बिन अनस, तुम भी उस तरफ से जाकर घेर लो, भागना चाहें तो पीछा मत करना, भागने देना, हम शबस की तरफ जा रहे हैं, जाओ।

0: क्या हुआ जलजोशन के बेटे? फिर भाग निकले?
1: तुम ही बता दो नौफिल, अगर मैं बात करूंगा तो फिर बेवफाई का इल्जाम ही लग जाएगा मुझ पर।
2: कोई फायदा नहीं अमीर, जब तक अश्तर का बेटा है

0: इसी तरह खामोश खड़े रहे, टिकटिकी बांधकर एक दूसरे को देखते रहे
1: खामोश
0: तो?
1: बस, खामोश। मुझे आप लोगों की बोसीद रस्सी पर भरोसा करके इस कुएं में नहीं उतरना चाहिए था। मुझे उसी दोस्ताना सियासत के सहारे मुख्तार से निमट लेना चाहिए था। ये भंवर कातिलाने हुसैन से दोस्ती का नतीजा है।

0: मेरे जैसे लोग लहरों की तोश पर रहते हैं अबाकुत।
1: काश आप शिमर शबस जैसों पर भरोसा ना करती। इन लोगों ने अपनी बेकदरों की व जानों के डर से आपको मुख्तार के आगे खड़ा कर दिया है। मेरी मानिए तो अमीर, अभी भी उन पर भरोसा ना करें। ये लोग अगर आपका ठिकाना जान लें, मुख्तार के आगे खुद को मीठा साबित करने के लिए आपको आगे कर देंगे।
0: तुम्हारे अलावा कोई भी मेरा मुखलिस नहीं बचा। शबस कुत्ते की तरह सुराग में लगा हुआ है। वो ये जानना चाहता है कि मैं महल से कब निकलूंगा और कहां जाऊंगा। अब तक मैंने कुछ भी जाहिर नहीं किया है।
1: अच्छा किया आपने। अगर ये लोग ये जान ले कि आप कब महल से निकल रहे हैं, तो कुछ ऐसा कर देंगे कि आप छुपने के मकाम पर पहुंचने से पहले मुख्तार के आदमी हाथ लग जाएं। आपको इस तरह जाना होगा कि कोई भी ना समझ सके कि आप कब गए हैं।
0: मैंने सोच लिया है कि सिर्फ तुम मेरे साथ आओगी। मैं नहीं चाहता कि सिपाही भी हमें देखें।
1: सिपाही तो आपको हर हालत देख ही लेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो आपको पहचान ना सके।
0: मसलन क्या करें?
1: जनाना लिबास बेहतर रहेगा। जनाना लिबास बेहतर रहेगा।

0: क्या बात है बखुद?
1: खैरियत?
0: आखिरकार अमीर क्या करना चाहते हैं? 3 दिन से हम घेराव में हैं। अन करीब खाना वगैरह भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक दूसरे का गोश्त खाने पर मजबूर हो जाएंगे।
1: सब ठीक हो जाएगा, ये नौबत नहीं आएगी। आइए।

0: इस आदमी ने हमें धोखा दे दिया।
1: कैसा धोखा? उसे जाना था, वो चला गया
0: बगैर बताए क्यों गया?
1: अगर बता देता तो तुम क्या कर लेते?
0: मैं भी जाना चाहता था।
1: ठीक है तो फिर जाओ, रास्ता खुला है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी ने तुम्हें रोका नहीं है।
0: हाँ चला जाऊंगा। तुम समझते हो कि मुख्तार के आगे घुटने टेक कर सर झुका के इल्तिमास करूंगा? तुम भी अगर सरे तस्लीम खम करना चाहते हो तो गलती पर हो, मुख्तार तुम्हारी बैत हरगिज कबूल नहीं करेगा।
1: मैं वादा ले लूंगा, अगर मुख्तार अपने वादे को तोड़ेगा तो फिर हुकूमत नहीं कर सकता।
0: तुम्हारी मर्जी, ये अमान सिर्फ मसलहत का खेल है। तुम भी हमारे साथ की तरह खाम ख्याली में हो शबस। अरे ओ अबक,

0: इतनी देर की, इतनी मोहलत दी कि जितने लोग भागना चाहते थे भाग गए।
1: तुम्हारा मकसद क्या है रुफा?
0: बिन मुती, बिन हज्जाज, शिमर, नूफिल सब भाग गए। हमें उसी रोज अव्वल इस मकड़ी के चाले पर हमला करके सितमकारों का खाना खराब कर देना चाहिए था।
1: अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है रफा, इतनी जल्दी फैसला मत करो।

बहुत खूब इराक के शहंशाह, ये नफीस तख्तो ताज तुम्हें मुबारक हो। जब इस पर बैठोगे तो समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं है, समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं, समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं। या दलील अल-मुत्तकीन, अबू मुफलिस, ये तख्त यहां से हटा दो।

0: माफी चाहता हूँ अमीर, आपके खादिमों ने बड़ी मेहनत करके महल के आदाब के मुताबिक तख्त को सजाया है, कोई ऐब वगैरह है क्या इसमें?
1: बेऐब होना ही इसका ऐब है। इसे हटवा कर एक सादा सी कुर्सी रखवा दीजिए।
2: हर सवारी का पालान उसके शायाने शान होना चाहिए अबू इसहाक। इस खूबसूरत महल में तख्त के बजाय एक सादा कुर्सी रखवाना मुनासिब जोड़ नहीं है।
1: इस तख्त का जलवा अखलाक और किरदार को बदल देता है इब्राहिम। हमें तख्त पर सवार होना है या तख्त को हम पर सवार होना चाहिए?

0: चाहिए। इस महल में हमारी सादगी कोई नामुनासिब जोड़ नहीं है। इस खूबसूरत महल की रौनक हमारी सादगी के आगे एक नामुनासिब जोड़ है। हम चंद दिनों से ज्यादा इस महल के मेहमान नहीं हैं इब्राहिम। हमारी हुकूमत का बच्चा जब चलना सीख जाएगा, हम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर एक सादा से मकान में अदालत की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तय ये पाया था कि हमारी हुकूमत में मौला अली की रंगोबू होनी चाहिए।
1: इब्राहिम, क्या ये हैफ नहीं कि अबू इसहाक उस तख्त पर बैठे जिससे इब्ने मरजाना की बू आती हो?
2: मुझे जवाब मिल गया हीरानी भाई। लोग कई सालों के बाद वो खुतबे सुनना चाहते हैं जिनमें अली की खुशबू हो।
0: बहुत बड़ा बोझ है मेरे कंधों पर। मौला अली के सामने शर्मिंदा न होना पड़े।

chapter 17. और आयत का निशान है 70, chapter 17, verse number 17. इरशाद रब्बुल इज्जत होता है कहा, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलकद करमना बनी आदम, हमने जरूर आदम की औलाद को करामत का ताज, इज्जत का ताज हमने बख्शा है. वलकद करमना बनी आदम, वहमल्लाहुम फिल बर्र वल बहर, और हमने आदम की औलाद को सैर करवाया, कहाँ पर? खुश्की के ऊपर, जमीन के ऊपर और तरी के ऊपर, दरियाओं में. फिल बर्र वल बहर, वरज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात, हमने आदम की औलाद को हमारी तरफ से अच्छी अच्छी रोज़ी, तय्यबात वाली रोज़ी इनायत की. वफ़द्दलनाहुम अला कथीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, और हमने उन्हीं आदम की औलाद को हमारी जितनी बनाई हुई चीज़ है, हमारी जितनी मखलूक़ात है, हमने जो जो चीज़ों को खल्क़ किया है, उन सब मखलूक पर हमने सबसे फजीलत किसको दी है? आदम की औलाद को. वफ़द्दलनाहुम अला कथीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, हमने जो भी बनाया सब के ऊपर हमने हजरत इंसान को फजीलत बख्शी है. सवाल ये होता है कि ऐ मुसलमान, जिस इंसान को खुदा ने करामत का ताज पहनाया, इज्जत बख्शी, सवाल ये होता है कि क्या मेरा ये हक हो सकता है कि मैं किसी इंसान के सर से उसकी इज्जत का ताज जो अल्लाह सुबहान व तआला ने पहनाया है उसको मैं उतार दूं? दूसरे अल्फाज में, क्या मुझे ये हक है कि मैं किसी इंसान को जलील करूं? क्या मुझे ये हक है कि किसी इंसान को जिसने खुदावंद करीम ने इज्जत बख्शी है? वलकद करमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को करामत का ताज पहनाया, करामत की पाक पोशी उसको हमने इनायत कर दी, तो क्या मेरा ये हक बन सकता है कि मैं किसी आदम की औलाद की बेइज्जती करूं? हो सकता है आमिर भाई? नहीं हो सकता. दीन इस बात की इजाजत नहीं देता. लेकिन बात हमें करनी है कहां पर? हमारे आठवें इमाम, इमाम अली रज़ा अल गरीब अलैहि सलाम के. उनकी जिंदगी में अगर नजर की जाए तो उनकी जिंदगी का एक वाकया है. बल्क का आदमी बयान करता है, कुंतु मा अल इमाम फी सफर इला खुरासान. मौला, आपको पता है ना, मदीना से खुरासान, जिसका आज नाम हमारे दरमियान मशहूर है, मशहद मुकद्दस है. तो ये बल्क का आदमी बयान करता है कि मैं इनके साथ था सफर के दरमियान, और एक दिन फदा यौमन इला माइदतिन लहू, मैं उनके साथ था, मैंने देखा कि मेरे मौला ने, मेरे इमाम ने एक दस्तरखान को बिछाया, एक मेज को सजाया, और उसके बाद क्या किया? फजमा मिन मवाली मिन सूदान वगैरह. और मेरे मौला ने क्या किया कि उनके जो खिदमत गुजार लोग थे, खादिम, मुलाजिम, नौकर, चाकर बोलते हैं उर्दू में, नौकर चाकर ऐसे बोलते बोलते एक सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. ये कभी कभार बार बार मैं सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि मैं गुजराती आदमी हूं, मेरी मादरी जबान उर्दू या हिंदी नहीं, मैं गुजराती आदमी हूं, इसलिए कभी कभी शक होता है कि ये अल्फाज उर्दू में या हिंदी में कहे जा सकते हैं या नहीं. तो मैं आठवें इमाम की बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मौला ने दस्तरखान को सजाया और अपने मवाली, खिदमत गुजार, मुलाजिमों को जमा किया. मिनस सूदान, उन मुलाजिमों में वो लोग थे कि जो काले चमड़ी वाले थे, काले रंग के वगैरह, और उनके अलावा भी थे. ये कौन लोग थे? मेरे और आपके आठवें इमाम के नौकर चाकर थे, खुद्दाम थे, खिदमत करने वाले थे. तो ये बल्क का आदमी कहता है कि मैंने जब देखा कि मेरे मौला ने उसी मेज पे, उसी दस्तरखान पे अपने नौकर चाकर को भी बुलाया, ऊपर से काले लोगों को भी बिठाने की दावत दी, तो मैं आगे बढ़ा. फकुल तो जाल तफिदा कई अब्न रसूलिल्लाह, उन्होंने बात कैसे शुरू की? कहा फर्जंद रसूल, मेरी जान आप पे कुर्बान.

हूँ। आपने देखा ये मीठा मीठा बोलना, जिंदगी में ऐसे ही होता है कि बात इतनी हमारे सामने मीठी मीठी बयान की जाती है, इन्होंने भी बात ऐसे बयान की, फर्जंद रसूल मेरी जान आप पे फिदा हो, फिदा का जाल तो फिदा का अब्द रसूल लौ अजलता हा ओला इला मा इलतिन। फर्जंद रसूल क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनका मायदा, इनका जो दस्तर

मौला तो एक तरफ, आइए पहले बीबी पाक बतूल फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम। आपने उलमा हज़रात से जरूर सुना होगा कि जब इस मुकद्दस घर में जनाब फिद्दा अलैहिस्सलाम को लाया गया ताकि बीबी पाक बतूल अलैहिस्सलाम की मदद की जाए, तो उलमा किराम से आपने सुना होगा कि जनाब फिद्दा जब इस मुकद्दस घर में आई है तो जनाब फातिमा अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी थी कि इस बीबी को मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं, बशर्त ये कि एक दिन मैं काम करूंगी एक दिन वो। ये वाला रवैया, ये वाला सुलूक आज का मुसलमान कर सकता है? हमने नौकरों को क्या समझा है? जनाबे ज़हरा अलैहिस्सलाम की मिसाल हमने दे दी। आगे निकलते हैं। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उनकी सीरत पे नजर डालिए तो वहां भी पता चलेगा कि मौला के यहां जो काम करता है, जो खिदमत अंजाम देता है, उसके साथ मेरे और आपके मौला का रवैया या सुलूक कैसा और क्या है। एक दिन का मकाम है। आपने ये भी उलमा हज़रात से सुना होगा कि मौलाए कायनात ने कंबर को कुछ पैसे दिए और कहा, कंबर बाजार में जाओ, एक कमीज मेरे लिए और एक आपके लिए। कंबर नौकर अली अलैहिस्सलाम है, गया बाजार में, वापस आया, मौला के सामने दो पोशाक दो कमीज पेश किए, कहा, मौला ये आपके लिए मैंने चुना और ये मेरे लिए। मौला ने पूछा, इसमें फर्क क्या है? कहा, मौला ये महंगा है वो आपके लिए, जो सस्ता था वो मेरे लिए। मौला ने कहा, कंबर मैं बूढ़ा हो गया हूं, तू जवान है, ये महंगे वाला कमीज तू रख और सस्ते वाला कमीज मैं रखूंगा। ये क्या है? खादिम के साथ का सुलूक। हमने हमारे माशरे में, हमारे यहां जो नौकरानी काम करती है, जो मुलाजिमा है, उसके साथ क्या ऐसा रवैया मेरा है या नहीं? अल्लाह सुबहान व तआला ने इतनी इज्जत बख्शी थी हजरत इंसान, मैं नौकर के साथ क्या करता हूं? इतनी ऊंची आवाज से बात, इतनी उसकी बेइज्जती, इतनी उसको सबके सामने जलील भी कर लेता हूं, कोई बात नहीं। गुजराती का शब्द अल्फाज है, गुजराती में कहवा इंसान भुलकड़ों से, इंसान भुलकड़ों से, इंसान भूल जाता है कि वो भी इंसान है और सामने उसके यहां जो नौकरी कर रहा है, जो खिदमत दे रहा है, वो भी उसी अल्लाह सुबहानहू व तआला का बंदा है, वो भी अल्लाह सुबहानहू व तआला की कनीज है। बंदा भूल जाता है कि मैं किसके सामने हूं। ए मुसलमान, क्या तूने कभी सोचा कहां कहां तक आठवें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक दूसरा नौकर है, उसका नाम ही है यासिर अल खादिम, उसका नाम ही पड़ गया अल खादिम, खिदमत करने वाला, इतना नजदीक का मुलाजिम आठवें इमाम का। कब का? जब वली अहद पर थे आठवें इमाम, मतलब यूं ही समझो कोई बादशाह थे, वजीर आला थे, उसका गुलाम यासिर, जिसका नाम तारीख ने अल खादिम भी डाल दिया, यासिर अल खादिम। यासिर अल खादिम कहता है कि आठवें इमाम ने, मेरे मौला ने मुझे बुलाया, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, आइए बैठे, मेरे मौला ने मुझे बुलाया और कहा, यासिर एक बात का ख्याल रखना, यासिर जब भी तुम खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो दस्तर

मिन्हाज भाई आपकी बारी है आज, देखिएगा क्या होता है, सुनिएगा। इंसान अशरफुल, बोलो बोलो आवाज से, आपने देखा क्या बोला, इंसान अशरफुल मखलूकात है, गलत। किसने कहा इंसान अशरफुल मखलूकात है? तो फिर फिरौन को कहां डालोगे, नमरूद को कहां डालोगे, हाँ कहां डालोगे, कारून को कहां डालोगे, यजीद को कहां डालोगे, ये सब अशरफुल मखलूकात नहीं। इंसान में अशरफुल मखलूकात होने की सलाहियत है, वरना तारीख के अंदर इतने जालिमीन जो गुजरे हैं वो सब अशरफुल मखलूकात? आपका जवाब है नहीं। इसी के अंदर मेरा भी शुमार हो सकता है कि मैं जब अपने नौकर चाकर खुद्दाम मुलाजमीन के ऊपर जुल्म करता हूं तो फिर मेरे अंदर और इन जालिमों के अंदर फर्क क्या रह गया? अगर मुझे अशरफुल मखलूकात बनना है तो खुदा ने बता दिया कि हमने अंबिया हजरात को इसलिए भेजा था ताकि इंसानियत के दरमियान अदलो इंसाफ को कायम किया जाए, ले यकूम अन्नास बिलकिस्त। यहां का बानी मजलिस कौन है? क्योंकि आधा घंटा हो गया, कितना पढ़ने का, एक घंटा, डेढ़ घंटा, पौना दो घंटा, कौन है यहां बॉस, कौन है आप में से? आप इश्तियार में एक घंटा है, चलो एक घंटे के अंदर खत्म करना पड़ेगा वरना जुल्म हो जाएगा। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ऐ मुसलमान याद रखना, ये माशरे का जो तबका है शायद तुझे पता नहीं कि इनका मर्तबा अल्लाह सुबहानहू व तआला के पास क्या है। तू तो भूल जाता है ना कि तेरे सामने जो खड़ा है वो तेरे जैसा ही इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, उसको भी अल्लाह सुबहान व तआला ने करामत का ताज पहनाया है। अब देखिए बात आगे बढ़ाते हैं, ये सब जो है हमारे यहां मुलाजमीन के साथ मेरा सुलूक क्या होता है? आपको पता है हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन अलैहिस सलाम, का एक जखीरा हमारे सामने आया है जिसका नाम रिसालतुल हुकूक है। होगी वो किताब, यहां पर भी मिलती होगी, हर जगह गली गली मिलती होगी, जिसमें मौला ने 50 से ज्यादा, 51 एग्जैक्टली 50 से ज्यादा हकों को बयान किया है। इनका हक क्या है? क्या कभी मैंने अपनी जिंदगी में ये अपने आप से पूछा कि मैं मालिक होते हुए और सामने वाला, नहीं उल्टा में, उल्टी मिसाल, तू मालिक होने वाला और मैं खादिम होने वाला, क्या हमने साथ में मिलकर कभी ये सोचा कि हमारा आपस में एक दूसरे पे हक क्या है? चौथे इमाम ने ये हक हमारे सामने क्यों पेश किया? क्यों? कभी हमने पढ़ा है, कभी हमने सुना है। ये माशरे का वो तबका है। आज पहली ही मजलिस से मैं आपको आगाह कर देता हूं कि ऐ मुसलमान, गुजराती में कहते हैं, गुजराती में कहते हैं, ज्यार थी जाएगा त्यार थी सवार। आज अपनी आंखों को खोल डाल। अगर खुदा ने तुझे थोड़ी सी मालो मिल्कत इनायत की है और तेरे नीचे खुदा के कुछ बंदे या कुछ कनीजे काम कर रही है तो तू अपने आप को बड़ा मत समझना। तेरे पास अगर नौकर चाकर है तो उसका तुझ पे हक है और उसके ऊपर भी तेरा हक है। रिसालतुल हुकूक को खोलिएगा, रिसालतुल हुकूक को खोलिएगा। चौथे इमाम ने मालिकों को, जिसके यहां लोग खिदमत करते हैं, बयान किया फअम्मा हक्कुल मौला, जिसके पास नौकर है, खादिम है, मुलाजिम है, उसका हक यह है।

कि जब मैं बाजू में गया तो देखा कि मौला रोटी के टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते हैं, दूसरा टुकड़ा फेंकते हैं। मैंने कहा ये क्या हुआ, रोटी के टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़े मौला तनावुल फरमाते हैं और कुछ टुकड़े फेंकते हैं। मैं और नजदीक गया, मैंने क्या देखा कि मेरा मौला एक रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डाल रहा है, एक रोटी का टुकड़ा सामने नजीसुल आइन कुत्ता था, कुत्ता उसको दे रहे थे। मैं बाजू में गया, मैंने कहा मौला अगर आप चाहते हो और ये जानवर अगर आपको तंग करता है तो मैं पत्थर मार मार के उसको हटा दूं। क्या आप खाना खा रहे हैं और बाजू में कुत्ता खड़ा है? इमाम ने कहा नजी हरगिज नहीं, मैं इसको इसलिए खिला रहा हूं कि मुझे अपने परवरदिगार से शर्म आती है कि मैं खाना खाऊं और खुदा की कोई मखलूक जी रूह कि जिसके अंदर खुदा ने रूह डाली है वो मुझे खाते हुए देखता हो। ऐ खुदा के बंदे, मेरे और आपके इमाम ने हमको क्या सबक दिया कि जानवर भी सामने खड़ा हो तो उसको खाना दिया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, नौकर चाकर खादिम मुलाजिमों के साथ क्या ऐसा मैं करता हूं कि अच्छे अच्छे खाने मैं खाता हूं और उनको याद भी नहीं करता? बहुत सी बार होता है, ये पूरी दुनिया का ये तजुर्बा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपको गली गली ये बात दिखेगी। मैं बड़ा सेठ हूं, ड्राइवर के साथ होता है ना, यहां होता होगा, आप बोलिएगा अमीर भाई, रेस्टोरेंट में गए, मतम में खाना खाने गए, मैं अहलिया बच्चे सब अंदर घुस गए, नौकर वहां क्या कर रहा है, ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, या तो उसको कुछ एक दो नोट रुपयों के थमा देंगे, तू खा लेना, भाई उसको तेरे साथ ले जा, इतनी हिम्मत है, इतना बड़ा सीना है तेरे अंदर। आठवें इमाम ने कहा मेरे काले गुलाम भी उसी मेज पे खाएंगे जहां तेरा मौला और मेरा मौला बैठेगा। अजीजान मोहतरम, ये तबका आज से हम उठ जाए कि इसके लिए हमें खुदा की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा, मैंने अपने नौकरों के साथ क्या रवैया रखा है और मेरा सुलूक क्या है। हमने आपके सामने नबी की सीरत बयान की, करबला में क्या कोई नौकर नहीं था, जॉन गुलाम था ना, कैसे हुसैन मजलूम ने उसको गले से लगाया और मैदान की तरफ जाने दिया। गुलाम था, अब्द ममलूक, गुलामों के साथ चौथे इमाम ईद के दिन, आपने सुना होगा मौला हाजिर होते थे ईद के दिन और गुलामों के सामने, हमने कभी अपने गुलामों का शुक्रिया अदा किया? आपको पता है मैंने आपको कहा था ना, इंसान बुलकड़ों से, मेरे जैसा सेठ जो होता है वो क्या करता है, अगर उसकी जिंदगी में 400 दफा अगर किसी मुलाजिम से काम कराना पड़ा तो 400 दफा काम कराते हुए उसको 10-20 दफा उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उसको यही याद है कि मैंने थैंक यू बोला था, मैंने शुक्रिया बोला था, लेकिन कितनी दफा भाई, 20 दफा, 400 दफा ये गुलाम तेरा काम किया उन्होंने, तू याद करता है रखता है कि आज जो भी तू है खुदा ने इस नौकर को तेरे और अल्लाह के बीच में वसीला करार दिया है, सबब करार दिया है। चौथे इमाम ईद के दिन आया, मौला ने सबको जमा किया और मौला ने कहा आज ईद का दिन है, मैं आपके सामने माफी चाहता हूं। चौथे इमाम गुलाम हजरत कौन थे? मेरे मौला के तरबियत याफ्ता लोग थे। कहा मौला आप हमसे माफी मांगो,

कोताहियां तो हमसे हुई, गलतियां तो हमसे होती है, और आप मालिक होते हुए, हमारे मौला होते हुए हमसे क्यों? क्योंकि चौथे इमाम की नजर में ये जो काम है वो क्या है? मैं आपको दावत देता हूं, ये ऐसी दावतें मैंने अपनी जिंदगी में जहां भी जाता हूं दावतें देता हूं, ये दावतें कभी कबूल होती ही नहीं, आज शायद हो जाए। इलाही आमीन बोलो भाई। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। सहीफतु सज्जादिया को खोलना, उसमें एक दुआ है 38 नंबर की, दुआ नंबर 38। देखिएगा मौलाए कायनात, मौला चौथे इमाम क्या दुआ कर रहे हैं। ये दुआएं हमारे पास जो आई है वो पढ़ने के लिए नहीं, वो हमारी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आई है। इस दुआ में मौला ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी अअतज़रु इलैका मिन हक्के मज़लूमिन ज़ुल्मा बिहज़रति फलम अंसुरहु। खुदाया, मैं तेरी बारगाह में उस बात की माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं कि मेरे सामने किसी के ऊपर जुल्म हुआ और मैंने उस मजलूम की मदद नहीं की। नौकरों पे मजलूम हो, नौकरों पे जब जुल्म होता है तो मैं आगे खड़ा होता हूं। वमिन मारूफिन उस दिया इलैया फलम अश्कुर हो। खुदाया, उसकी भी मैं माफी चाहता हूं कि मेरे साथ कई लोगों ने मारूफ नेकी का काम किया लेकिन मैंने कभी उनको शुक्रिया नहीं कहा। ये कौन है? नौकर। वमिन मुसीइन इअतज़रा इलैया फलम अअज़िरहु। खुदाया, मैं उस बात की भी तेरी बारगाह में माफी चाहता हूं कि किसी ने मेरे साथ बुराई की और बुराई करने के बाद वो मेरे पास माफी तलब करने के लिए आया, फिर भी मैंने माफ नहीं किया। ये कौन करता है? ये नौकर की जिंदगी में बहुत आता है कि उनसे गलती हो जाती है तो वो मालिक से माफी चाहता है, लेकिन मैं, इतनी तनख्वाह कटेगी, तुझे निकाल दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। उसके बाद है वमिन कुल्ले दी फाकतिन, फाके वाले हजरात मेरे सामने आए फलम उसिर हूं तो मैंने अपना खाना उनको नहीं दिया। ये क्या है? अहले बैत अलैहिस्सलाम के सुलूक है, हमारे लिए रवैये है, ताकि मैं अपनी जिंदगी में इस्लाह लाऊं। ये वो माशरे का तबका है कि जिसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे दीन ने मुझे क्या सिखाया है। क्या ऐसा तो नहीं कि इसके साथ मैं जुल्म पे नाइंसाफी पे नाइंसाफी किए जा रहा हूं और मुझे इस बात का ख्याल भी नहीं कि उसका मेरे सर पे कोई ना कोई हक है। वो अल्लाह का नुमाइंदा है, वो अल्लाह का मेरे लिए वसीला है और सबब है। यही बातें हमारे आठवें इमाम ने जब लोगों को सिखाई ना, तो वहां दरबारों में, अब्बासी बादशाह के दरबारों में मेरे जैसे थे लोग जिन्होंने बादशाह के कानों में कहा, इसको अगर तूने नहीं हटाया तो तेरी कुर्सी जाएगी। वो वक्त आ गया कि आठवें इमाम को जहर दिया गया। अबू सल्त बयान करता है कि मौला को दरबार में जब बुलाया गया तो मैं वहां पर था। मौला के सामने अंगूर पेश किए गए, मैं था, मैंने देखा कि जब जालिम बादशाह ने इसरार किया तो मेरे मौला ने अपने मुबारक दस्त को अंगूर की तरफ चलाया। अंगूर को लेने के बाद मौला ने अपने मुंह में डालना चाहा तो मुंह में से एक जुमला निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

साथ रखा। एक खून जहां पर ज़रूरत पड़ी देने की, वहां पर मर्दों ने खून दिया, और जहां पर पैगाम पहुंचाने की बारी आई वहां पर ख़वातीन ने आगे बढ़कर उस इनकलाब के पैगाम को दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचाया। असरे आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस इनकलाब को, इस रेवोल्यूशन को हज़रत ज़ैनब के हवाले किया कि अभी आज के बाद इस वक्त से लेकर फिर मदीना पहुंचने तक ऐ ज़ैनब तुम ज़िम्मेदार हो इस इनकलाब के पैगाम को उठाना और ले जाना। बड़े काम थे ज़ैनब कुबरा के, कभी इमोशनल काम भी थे जिनको अंजाम देना ज़ैनब की ज़िम्मेदारी थी, और कुछ इंटेलेक्चुअल काम थे जिनको अंजाम देना ज़ैनब की ज़िम्मेदारी थी, और कुछ ऐसे काम थे जो इमामत वाले काम थे, डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम थे जिनको पूरा करना ज़ैनब की ज़िम्मेदारी थी। जो इमोशनल काम थे जो एक खातून सिर्फ अंजाम दे सकती है, वो बेवाओं को संभालना और यतीमों को तसल्ली देना था, आसान काम नहीं था। करबला के बाद जो ज़ैनब का लश्कर था वो लश्कर इमाम हुसैन के लश्कर और असहाब से बिल्कुल अलग था। इसलिए बाज़ उलमा ने नक़ल किया है कि जब ज़ैनब कुबरा करबला से निकल रही थी तो आपने ख़िताब किया मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आलम माना में, आलम अरवाह में, कि भैया आपके लश्कर में और मेरे लश्कर में बहुत फ़र्क है। आपके लश्कर में अब्बास व अकबर व कासिम मौजूद थे, लेकिन मेरे लश्कर में रबाब व उम्मे फरवा व सकीना मौजूद है। आपके लश्कर में लड़ने वाले मौजूद थे, फ़ाइट करने वाले मौजूद थे, लेकिन मेरे लश्कर में जो मेरे साथ हैं वो सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले और मेरे साथ चलने वाले हैं, ख़वातीन हैं। बहुत फ़र्क है इस लश्कर में। जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो एक अलग ज़िम्मेदारी है, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेवाओं को संभालना, यतीम बच्चों को तसल्ली देना है, और जो डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं जिसे कहता हूँ एक गैबी काम जो ज़ैनब कुबरा के हवाले किया गया था, वो इमामत को संभालना था और इमामत को बचाना था। इमामत का तहफ़ एक डिवाइन काम है, एक इलाही ज़िम्मेदारी है जिसे ज़ैनब कुबरा ने इस इनकलाब में पूरा किया है। संभालना, सपोर्ट करना और बचाना, ये इलाही ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। हज़रत ज़करिया के हवाले किया अल्लाह तबारक व तआला ने, हज़रत यहिया, हज़रत मरियम को संभाले और आपको बचाए और पैगाम दुनिया तक पहुँचाए। हज़रत ज़करिया की ज़िम्मेदारी हज़रत ज़ैनब ने निभाई, हज़रत अबू तालिब की ज़िम्मेदारी हज़रत ज़ैनब ने निभाई है। एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़ैनब कुबरा को पूरा करना था, और कोई इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़ैनब कुबरा की इंशाल्लाह जिसकी तरफ हम इशारा करेंगे। इसलिए किसी शायर ने कहा, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, कि ये दो इमामों को घर तक बचा के लाई है। ज़ैनब कुबरा जो मदीना वापस पहुंची हैं, ज़ैनब कुबरा ने अपने दोनों बच्चों को कुर्बान कर दिया, लेकिन हुसैन के दोनों बच्चों को ज़ैनब कुबरा ने बचा लिया और बचाकर घर तक ले आई। सैयद साजिदीन और इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का तहफ़्फ़ुज़ किया आपने, अपने आप को पेश किया, जहां भी आप इन दोनों की शहादत की बारी आई या शहादत के लिए धमकाया गया तो ज़ैनब कुबरा ने अपने आप को पेश किया और इन दोनों को बचाकर ज़ैनब कुबरा मदीने तक ले आई। लेकिन नहीं, किसी ने कहा दो इमाम नहीं, ज़ैनब कुबरा को सलाम कर इस्लाम, कि ये ज़ैनब ने 9 इमामों को घर तक बचा के लाई है। सिर्फ दो इमाम नहीं, अगर सैयद साजिदीन की शहादत हो जाती इमाम बाकी की, तो फिर नस्ल इमामत ख़त्म हो जाती। ज़ैनब कुबरा ने 9 इमामों की इमामत को बचाया और मदीने तक ले आई हैं। थोड़ी देर के लिए, चूँकि अशरे ज़ैनबिया है, थोड़ी देर के लिए इस बड़ी शख्सियत, इस अजीम शख्सियत पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। उलमाए कराम ने जब भी गुफ्तगू की है इस अजीम शख्सियत पर, करबला इनकलाब करबला के बाद, इसलिए करबला से पहले भी आपकी एक तारीख है, मुकम्मल तारीख है, लेकिन ज़्यादातर जो गुफ्तगू होती है इनकलाब करबला के बाद, असर आशूर से आपका एक इनकलाब का सफ़र, पयाम का सफ़र, मैसेज डिलीवर करने का सफ़र, पैगाम पहुंचाने का सफ़र शुरू होता है। ज़ैनब कुबरा ने कई मकामात पर कई काम किए हैं जो दीन के तहफ़ के लिए बहुत काम आए। पहला काम, 11 मुहर्रम की सुबह ज़ैनब कुबरा ने प्रिडिक्शन किया था,

और हमारे लिए एक मैसेज है। ज़ैनबे कुबरा ने जुमला का, रब्बना तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान। एक आम तौर पर जो खातून होती है वो टूट जाती है गिरिया की वजह से, गम की वजह से। ज़ैनबे कुबरा ने कहा, परवरदिगार हमारी इस कुर्बानी को तो कबूल फरमा। वही जुमला, उसी तरह का जुमला है जो हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल ने खाना काबा की तामीर के बाद कहा था, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। काबे की तामीर के बाद इब्राहीम और इस्माईल ने कहा था, रब्बना तकब्बल मिन्ना। करबला तामीर करने के बाद ज़ैनब कुबरा ने कहा, रब्बना तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान। वो इबादत का काबा है, ये इश्क का काबा है। करबला क्या है? करबला इश्क का काबा है। वहाँ सर झुकाए जाते हैं, यहाँ पर दिल झुकता चला जाता है। नहीं, करबला की तरफ दिल भी झुकता है ना इंसान का, या सर झुकता है वह दिल झुकता है। दुआ की कबूलियत की दुआ की, आयतुल्ला खामिनाई मरहूम शहीद ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, हज़रत आसिया ने भी खिदमत की, हज़रत ज़ैनब ने भी खिदमत की। नहीं, हज़रत आसिया की शख्सियत बड़ी है। कुरान मजीद में हज़रत आसिया को अल्लाह तबारक व तआला ने नमूना करार दिया है, वो बड़ी शख्सियत है, ये भी बड़ी शख्सियत है। लेकिन हज़रत आसिया ने खिदमत करने के बाद अल्लाह से सिला मांग लिया। हज़रत आसिया ने खिदमत करने के बाद, हज़रत मूसा को बचाने के बाद आपने अल्लाह से दुआ मांग ली। यह दुआ क्या है? परवरदिगार मुझे, मेरे लिए तेरे नज़दीक, अर्श के नज़दीक मुझे घर चाहिए। इब्ने ली बैतन इंदकल जन्ना, परवरदिगार मुझे घर चाहिए तेरे नज़दीक, तेरे रहमत के नज़दीक, तेरे अर्श के नज़दीक, कुदरत के नज़दीक मुझे घर चाहिए। खिदमत की, दुआ मांग ली, अल्लाह तबारक ने दुआ को कबूल कर लिया। ज़ैनब कुबरा ने खिदमत करने के बाद दुआ नहीं मांगी, ज़ैनब कुबरा ने कबूल होने की दुआ मांगी। पर तू जो दे दे वो ज़ैनब को मंजूर है। कभी कभार होता ना, दुआएं करो अल्लाह के हवाले करो, परवरदिगार तू जो समझे वो दे दे। हम दुआ कर लें तो हमारे जहन के एतबार से दुआ करेंगे, वो अता करेगा अपनी कुदरत के एतबार से अता करेगा। हाँ, ज़ैनब कुबरा क्यों नमूना है? ज़ैनब कुबरा ने कहा, परवरदिगार अज्र तू देने वाला, लेकिन अगर कबूल कर ले वो अज्र भी खुद ब खुद बड़ा होता चला जाएगा। तो ज़ैनब कुबरा ने एक ताकत दिखाई, कैसे इंसान मुसीबतों में परेशानियों में एक एनर्जी ले सकता है, ताकत ले सकता है, वो दुआ है। अल्लाह की बारगाह में बंदा दुआ करे, परवरदिगार इस दुआ को हम कर रहे हैं इसकी नतीजे में हमें हिम्मत अता कर। अभी सफ़र तुलानी है, सब लंबा सफ़र है, इसारत वाला सफ़र है। शहादत से बढ़कर इसारत का सफ़र दुश्वार और मुश्किल होता है। बड़ी शख्सियतों के हवाले क्या, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तो ज़ैनब कुबरा ने यह जुमला कहा, पॉजिटिव जुमला, ताकि इंसान की ज़िंदगी इस तरह आगाज़ हो। इनकलाब करबला का आगाज़ किया आपने। तीसरा जुमला जो ज़ैनब कुबरा का है, जो इस अशरे ज़ैनबिया को बनाता है, वो जुमला अशरे ज़ैनबिया की बुनियाद बनता है, वो ज़ैनब कुबरा का जुमला दरबार इब्ने ज़ियाद में, कि जब इब्ने ज़ियाद ने सवाल किया, क्या ज़ैनब कुबरा, क्या तुमने करबला में क्या देखा, या तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो ज़ैनब कुबरा ने ज़ालिम के आंखों में आंखें डालकर जो जुमला इरशाद फरमाया वो फ़दाइल की बुनियाद बन गया। मा राई तो इल्ला जमी मीला, जालिम के सामने रोना कमजोरी की निशानी है, लेकिन जालिम के सामने एक जुमला कहना, स्टेटमेंट, फ्यूचर है इनकलाब करबला के फ्यूचर को बयान करना, दरहकीकत यह ज़ैनब का इरादा और यह ज़ैनब की सोच और यह ज़ैनब के इंटेलेक्ट होने के का नतीजा है। का मा राई तो इल्ला जमीला, मैंने करबला में सिवाय हुस्न के और ब्यूटी के कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मा राई तो इल्ला जमीला, कुछ नहीं देखा। इस जुमले के पीछे दास्तानें हैं, जुमले के पीछे कॉमेंट्रीज हैं, शरहें लिखी गई हैं, तफसीरें लिखी गई हैं। क्या रीज़न था कि ज़ैनब कुबरा ने जुमला कहा कि करबला में मैंने सिवाय हुस्न के कुछ भी नहीं देखा। लेकिन हर मुसीबत के कुछ दो फेसेस होते हैं, कभी गम का फेस है और दूसरा फजीलत वाला फेस है। करबला को हम इस निगाह से देखते हैं, ज़ालिमों ने हुसैन और असहाबे हुसैन औलादे हुसैन के साथ किया किया, एक फेस ये है, और दूसरा फेस है कि असहाबे हुसैन औलादे हुसैन अंसारे हुसैन ने हुसैन के साथ क्या किया, और हुसैन ने किस तरह अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश किया। उस फेस को देखना बहुत ज़रूरी है। असहाब ने क्या किया? चराग गुल किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह हुस्न नहीं है? क्या ये हुस्न नहीं है? हज़रत नूह बुलाते रहे, कोई आने वाले के लिए तैयार नहीं था जी। जंग-ए-उहद में हमारे रसूल बुलाते

रहे कोई आने के लिए तैयार नहीं था, और हुसैन करबला में भेज रहे हैं कोई जाने के लिए तैयार नहीं, कोई जाने की, ये हुस्न है, ये ब्यूटी है जो ज़ैनब कुबरा बता रही हैं। मैं सिर्फ इशारा करूँ, इंशाल्लाह आप गुफ्तगू को सुनेंगे उलमाए कराम की ज़बानी। तो ज़ैनब कुबरा का मार आई तो इल्ला जमीला, तो ये पूछना चाह रहा है कि उमरमला के तीर ने असगर के गर्दन के साथ क्या किया, तो मुसीबत देख रहा है, मुसीबत पूछना चाह रहा है, मैं ये देख रही हूँ कि तीर खाने के बाद इस बच्चे ने किस तरह मुस्कुराया, वो मैं मुस्कुराहट देखना चाह रही हूँ, वो तबस्सुम जो अली असगर के होठों पर आया, ये ब्यूटी ऑफ द करबला है, ये हुस्न करबला है, इसकी तरफ देखो। तो ये पूछना चाह रहा है कि हुसैन के गले को हमने काट दिया, नोके नैजा पर बुलंद कर दिया, ये मुसीबत है, ये परेशानी है, ये हुज़्न है, ये गम है, ये पूछना चाह रहा है, मैं ये बताना चाह रही हूँ उसी इस कटे हुए सर से जो कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ कूफे के बाजार में गूंज रही है, वो करबला का हुस्न है, वो करबला का, द ब्यूटी ऑफ द करबला। और करबला का हुस्न आज भी है ना, हम सजाते हैं, इमाम बारगाह को सजाते, ये भी एक ब्यूटी है जी। कभी कभार जो कल्चरल चीज़ें होती हैं ना, वो हकीकी रियलिटी को बचा लेती हैं और आगे बढ़ाती हैं। ये जो सजाया आपने इमाम बारगाहों को काले कपड़ों से, लाइटिंग से, ये हुस्न करबला है। इसलिए किसी बुजुर्ग स्कॉलर ने कहा, दिन ब दिन करबला का हुस्न बढ़ता जा रहा है, फ्लैग्स की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, बैनर्स की सूरत में, शार की सूरत में। कितना कम सुनते थे लब्बैक या हुसैन हम पहले, आज कितना ज़्यादा सुनते हैं लब्बैक या हुसैन। दिस इज़ द हुस्न ऑफ करबला, द ब्यूटी ऑफ द करबला। अब देखिएगा जब सफ़र लोग निकलते हैं नजफ़ से करबला की तरफ, कितना हसीन लगता है वो मंज़र, कितना हसीन लगता है वो मंज़र। बच्चे हाथ में कुछ खजूरें लिए हुए हैं, कुछ पानी लिए हुए खड़े हुए हैं, तबर्रुक बांटने के लिए तैयार हैं, सभी ने लगवा रहे हैं। ये करबला का हुस्न है, ये करबला की ब्यूटी है। लेकिन फ़र्क है हमारे सजाने में हुसैन के सजाने में। अल्लाह अकबर, मसाहिब का जुमला है लेकिन क्या करूँ, आ गया मेरी ज़बान पर। हम घरों को, इमाम बारगाहों को काले कपड़ों से सजाते हैं। हुसैन, अंसार हुसैन और औलाद हुसैन ने करबला को जिगर के टुकड़ों से सजाया है। हमारी सजावट में और उस सजावट में ज़मीन तो आसमान फ़र्क है। लेकिन ये करबला की रौनकें हैं, ये करबला की ब्यूटीज़ हैं जिसकी तरफ तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। ज़ैनब कुबरा ने ज़ालिम के दरबार में कहा, मार आई तो इल्ला जमीला। और चौथा जुमला ज़ैनब कुबरा का दरबार यजीद में है, वो जुमला प्रेडिक्शन भी है, वो जुमला चैलेंज भी है। कभी कभार ऐसी चैलेंजेस हुई हैं, अहले बैत ने किए हैं, और कुरान की कुछ चैलेंजेस हैं जिनको दुनिया जवाब नहीं दे सकी है। कुरान ना, कुरान का एक चैलेंज मौजूद है जहाँ पर कुरान नौदो बिला जलाया गया बास कंट्रीज़ में, तो किसी स्कॉलर ने कहा भी जलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुरान के अगेंस्ट तुम्हें खड़ा होना है कुरान जैसी कोई किताब ले आओ। आज भी चैलेंज मौजूद है जी, अगर तुम कुरान जैसी किताब ला सकते हो तो ले आओ, तो कुरान खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। 10 सूरे ले आओ, एक सूरा ले आओ कुरान जैसा। जब चैलेंज मौजूद है तो जलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको दूर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इल्म का जवाब इल्म से हो सकता है, जलाने से नहीं हो सकता। नहीं तो जवाब में किसी और स्कॉलर ने कहा, तुम सारे कुरान खुदा ना खास्ता जला डालो, हमारे पास इतने हाफिज़ान कुरान है, कुरान दोबारा छपवा लेंगे, ज़र्रा बराबर ज़ेर और ज़बर का फ़र्क नहीं आएगा। कितने हाफिज़ान हमारे कुरान है, ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला का इंतज़ाम है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह कुरान मजीद को बाकी रखने का वायदा किया है। तो कुरान मजीद का चैलेंज है, और एक कुरान का चैलेंज है, और एक अहले बैत का चैलेंज है। इल्मी एतबार से मिंबर रसूल पर बैठकर मौला कायनात ने कहा, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछे, चैलेंज है मौला कायनात का, इल्मी चैलेंज है, मुझसे पूछो। कई अहले सुन्नत के स्कॉलर्स ने कहा है, हम ये नज़र नहीं आता ऐसा चैलेंज किसी और इमाम और खलीफा या और हाकिम ने किया हो, किसी और स्कॉलर ने किया हो सिवाय मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जी थोड़ी देर और सुनना चाहते हैं तो एक मिलके सलावत पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली, आप ये सोच रहे हैं आपको हमने बिठा दिया तो सुनना ही पड़ेगा। किसी ने मुझसे सब्र का माना पूछा, जहाँ अशराए मुहर्रम में मौलाना सब्र किसे कहते हैं, मैंने मजलिस में कहा, जो आप 40 मिनट बैठकर मुझे सुनते हैं वो सब्र का पहला माना है। 40 मिनट मुझे सुनना, 40 मिनट आसान नहीं है, तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह वो सिफत मौजूद है कि 40 मिनट आप मुझे सुनते हैं, सब्र का पहला माना है।

करेंगे, शाम में बिछाएंगे, दुश्मनों के शहर में बिछाएंगे, नहीं दुश्मन के घर में बिछाएंगे। क्यों बिछाना है? दुश्मन के घर में हुसैन के जीत का ऐलान करना है, वहां से आजादारी की बुनियाद रखी ज़ैनबे कुबरा ने, आजादारी की बुनियाद है। कमाल है इस शख्सियत पर, जो फैसला ज़ैनब ने किया वो करबला के लिए टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था। जैसे रसूल की तारीख में शबे हिजरत टर्निंग पॉइंट है।

1981 की दिहाई के आखिर में ही आकाए खामनाई मुतवज्जह हो गए थे कि उनका इनकलाबी जज्बा, हुकूमत मुखालिफ तकरीर और सावाक से पोशीदा जिंदगी वगैरह पहलवी निज़ाम को गिराने का बाइस नहीं बनेगा।

0: बल्कि उन्हें कुछ असासी काम करने होंगे। ये वो मौका था कि जब आप मुतवज्जा हुए कि इनफरादी फालियत को इज्तिमाई फालियत में तब्दील कर दिया जाए। तो फिर क्या करें? 1967 में तीसरी मर्तबा कैदी बनने के बाद आकाए खामनाई ने मरहला वार और इज्तिमाई तरीके कार से इस्तफादा किया। एक वाज़े मकसद बनाया, पहलवी निज़ाम को गिराने के लिए एक मुनज़्ज़म और मजबूत बुनियाद फराहम की। कैसे? बुनियाद रखना, हम आहंग करना और मुनज़्ज़म करना। पहले मरहले में आकाए खामनाई ने हुकूमत की मुखालफत में अवामी बुनियाद फराहम करने की कोशिश की, जिसमें दीनी तलबा, ताजिर हजरात और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म शामिल थे। इब्तिदा में हर तबके के साथ अलग राबता रखा और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी। हर तबके के लिए मखसूस दुरूस और एक अलग कारकर्दगी का प्रोग्राम तरतीब दिया। दूसरे मरहले में आकाए खामनाई ने इन अवामी तबकों के दरमियान जो कल्बी और नफसियाती दूरियां थीं, उन्हें ख़त्म कर दिया। आपने अपने मुश्तरका दुरूस में आलिम और ताजर और तलबा सबको इकट्ठा कर लिया। मकसद वाज़े था कि सल्तनती निज़ाम के मुखालिफ अवामी तबकों को हम आहंग करना है। चूंकि हर अहम शख्सियत अकेले रहकर आमराना निज़ाम को नहीं गिरा सकती थी, तीसरे मरहले में अपने मंसूबे के लिए अवामी बुनियाद फराहम करने के बाद आकाए खामनाई ने कायदाना सलाहियतों के हामिल सैकड़ों लोगों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ ग्रोह तश्कील दिए, जिनकी क़यादत वो खुद कर रहे थे। वजूहात शरई और माली लिहाज से आप आज़ाद थे। इन ग्रोहों का काम अवामी तबकों को बवक्त ज़रूरत मुतहर्रिक करना था। ये सब कुछ क्या था? आकाए खामनाई ने कोई जमात नहीं बनाई, बल्कि हजारों इंसानों पर मुश्तमिल एक लहर उठाई, जिसकी क़यादत उल्मा, तलबा और ताजिर हजरात का एक खुफिया और मुनज़्ज़म ग्रोह कर रहा था। आपने जिस चीज़ की बुनियाद रखी, वो एक अवामी फ़ौज की मानिंद थी। इज्तिमाई काम की एक नई शक्ल, जिसने हौज़ा इल्मिया से जन्म लिया था, और एक ऐसी तारीखी हकीकत कि जिसे जान का शायद बहुत से लोग वर्ताए हैरत में डूब जाएं, वो हकीकत रूहुल्लाह खुमैनी थे, जो इस इनकलाब के असल रहबर थे, जिनके गिर्द दावे करने वालों का हुजूम और कुछ कारकुनों मुनज़्ज़म लोगों का इज्तिमा था। बिलाशुबा इन्हीं कारकुनों और मुनज़्ज़म लोगों में से एक नुमाया शख्सियत अली खामनाई थे।
1: और इन हुकूक में से जो अल्लाह ने फर्ज किए हैं, सबसे बड़ा हक रियाया पर हुक्मरान का हक है और हुक्मरान पर रियाया का हक है। यह अल्लाह सुबहाना व ताला की जानिब से एक फरीजा है, जिसे एक दूसरे के लिए करार दिया गया है, तो इसी से इनकी बाहमी उल्फतों को मुनज़्ज़म किया है और इनके दीन को इज्जत दी है। रियाया की इस्लाह मुमकिन नहीं है जब तक हुक्मरान सालेह ना हो, और हुक्मरान सालेह नहीं रह सकते जब तक रियाया नेक और सालेह होने में साबित कदम ना हो। अब अगर रियाया ने हुक्मरान का हक अदा कर दिया और हुक्मरान ने रियाया को उनका हक दे दिया, तो हक दोनों के दरमियान मोहतरम रहेगा और इस तरह हालात ठीक हो जाएंगे और हुकूमत बाकी रहने की उम्मीद की जाएगी और दुश्मनों की तमन्नाएं भी नाकाम हो जाएंगी।
0: यह हिस्सा आकाए खामनाई के नक्शे कदम पर चलता है कि जो रूहुल्लाह खुमैनी के तलबा में से एक मिसाल है। यहाँ एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इमाम का इनकलाब जनवरी 1979 में कामयाब हुआ।
1: तो खामनाई तुम? मैंने कहा जी हाँ। फिर बोला, अच्छा तो ये जिस खामनाई की बातें करते हैं वो तुम हो।

0: मस्जिद आजम कुम की बड़ी मस्जिद में से एक और हरम हजरत मासूमा से मुतसल है। यहाँ पहली मर्तबा पहलवी निज़ाम के मुखालफीन के कायद रूह उल्लाह खुमैनी की तस्वीर बुलंद की गई, जो तेहरान की एक जेल में कैद थे। सिर्फ एक तस्वीर थी, लेकिन ये तस्वीर आकाए खामनाई और आपके दोस्तों की रूह उल्लाह खुमैनी के साथ बैत का ऐलान कर रही थी। ये इसलिए ना थी कि वो एक उस्ताद और मर्जाए तकलीद थे, बल्कि इमाम और रहबर होने की हैसियत से थी। उस वक्त इस जगह से इस्लामी इनकलाब ईरान एक मुनज़्ज़म अंदाज में जाहिर हुआ।
1: जलसा बहुत अच्छा रहा, जितना हम सोच रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा रहा, और उसने हमें उम्मीदवार कर दिया। ऐसी फजा बनी कि जैसे कुम के दरवाजे इनकलाब के लिए खुल गए हैं, जैसे कोई बादल छट गया और पीछे से सूरज निकल आया। मैं खुश था कि इस मजमे के अंदर हम में से कोई एक भी अवाम के सामने जाहिर नहीं हुआ, और किसी को मालूम ना था कि इस प्रोग्राम की असल मनसूबा बंदी हम कर रहे हैं।
0: मुस्तकबिल में सावाक 11 अदद के तंजीमी ढांचे से आगाही हासिल करने में कामयाब हो गई। सावाकी मामूरीन ने जब इस तंजीमी ढांचे को देखा तो उंगुश्त बिदंदा रह गए, जिसे कुम के कुछ आम से तालिबे इल्मों ने बगैर किसी कबली तजुर्बे के बनाया था।
2: उनकी तादाद 11 थी। उन्होंने एक खुफिया तंजीम बनाई और उनके दरमियान एक मजबूत अंदरूनी तंजीमी निज़ाम मौजूद था। उनके प्रोग्राम बहुत मुनज़्ज़म हुआ करते थे। हर मीटिंग अराकीन में से किसी एक के घर हुआ करती और इसकी दावत के लिए तशहीर नहीं की जाती थी। इनका अपना एक ख़ास निज़ाम था कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। इस बिना पर चाहे उन्हें जेल में डाल दिया जाता या उनका पीछा किया जाता, कुछ फ़र्क न था। फिर जब इस खुफिया तंजीम का पता चल गया तो कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ के बारे में हुकूमत का इरादा था कि इन्हें फांसी दे दी जाए, कुछ को जेल भेज दिया गया, कुछ को मुल्क बदर कर दिया गया, और ये तो माजरे का आगाज था।
0: इमाम खुमैनी के तुर्की मुल्क बदर होने और आकाए खामनाई के मशहद में रिहाइश पजीर होने के बाद आकाए खामनाई की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ। मशहद की 14 साला जिंदगी में आकाए खामनाई ने अपने बुनियादी मंसूबे की पहली ईंट रखी और रूह उल्लाह खुमैनी की हिमायत में अवामी मुनज्जम तहरीक शुरू करने की कोशिश की। उनकी कोशिश थी कि अवाम एक मुश्तरका वाज़े हदफ रखती हो, यानी पहलवी सल्तनती निज़ाम को गिराना और रूह उल्लाह खुमैनी की क़यादत में एक इस्लामी हुकूमत कायम करना।
3: یعنی از قم برگشتم مشهد و در مشهد سکونت اختیار کردم
1: 1964 में कुम छोड़कर मशहद वापस आ गया और वहां रिहाइश इख्तियार कर ली, यहां तक कि 1979 में मशहद से आ गया।

0: दी गई थी। एक कमरे पर मुश्तमल थी, जहां अब आप बैठे हैं इससे भी छोटा कमरा था, और नमाजी भी 5-6 नफरी 2-3 सफों में होते थे, जिनमें बूढ़े और दरमियानी उम्र के लोग थे जो उसी मस्जिद के आसपास रहते थे। फिर जब मैं वहां चला गया, 2-3 रातें वो मेरे पीछे नमाज पढ़ चुके थे। एक दिन नमाज के बाद मैं उठा और उनकी तरफ मुंह करके कहा, ये जो चंद शब हम यहां इकट्ठे हुए हैं, इस बिना पर एक हक आपका मेरे ऊपर आ गया है और एक हक मेरा है जो आप पर है। मेरे ऊपर आपका हक ये है कि मैं आपसे कुछ बातें करूं, यानी मैं कोई हदीस वगैरह बयान करूं, जबकि मेरा आप पर हक ये है कि आप उसे सुने और याद कर लें। मैं आपके हक को अदा कर रहा हूं, क्या आप तैयार हैं कि अपनी जिम्मेदारी को अदा करें? उन्हें बहुत अच्छा लगा और कहा, हाँ हम तैयार हैं। और फिर बहुत ही कम अरसे में ये छोटी सी मस्जिद भर गई, यहाँ तक के जगह कम पड़ने लगी। और मस्जिद के एक हमसाया हाजी साहब ने हिम्मत करते हुए पीछे से कुछ जगह मस्जिद में शामिल की, और फिर मस्जिद की कदर बड़ी हो गई। 2-3 महीने के अंदर उस मस्जिद की शोहरत पूरे मशहद में, खास तौर पर नौजवानों में ज़बान ज़दे आम हो गई।
1: सावाक एजेंसी ने आकाए खामनाई के दर से तफसीर कुरान का पता लगाया कि कहां कहां हो रहा है। जब भी सावाक इनके दर्स को बंद करवाती, वो किसी दूसरी मस्जिद में दुरूस का नया सिलसिला शुरू कर देते।
2: आखिरकार इस शख्स को यहां हौजाए इल्मिया से निकालना होगा। ये शख्स एक बड़ी रुकावट और नाकाबिले इसलाह है।
1: बारह जून 1973 को सावाकी ने आकाए खामनाई को हुक्म दिया कि मस्जिद इमाम हसन में आपका दर्स कहना मना है।

0: लेकिन 4 महीने बाद आका खामनाई ने मस्जिद करामत में नया सिलसिला शुरू कर दिया।
1: जब मशहद में करामत मस्जिद मोहल्ले की सबसे बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन मस्जिद बन गई और मुकम्मल हो गई, उसके बानी और आसपास के कारोबारी हजरात ने इरादा किया कि वो मेरे पास आएं और मुझे उस मस्जिद में पेश इमाम के लिए दावत दें, ताकि इस तरह मस्जिद में रौनक बढ़े और वो आबाद हो जाए। मुझे उस मस्जिद में ले गए और लोगों की कसीर तादाद मस्जिद में आना शुरू हो गई। शायद आप भी वहाँ थे, आपने खुद मुलाहिजा किया है और मस्जिद के इज्तिमाआत को भी देखा है। हकीकत में ये सिलसिला लोगों के मुतवस्सत तबके में एक फिक्री इनकलाब का बाइस बना।
2: मबदा वाकई ये हरकत फिक्री दर बैन कशहई मुतवस्सत शुद।

0: सावाग को खबर हुई कि इनके घर में मीटिंग्स होती हैं जिनमें तलबा इकट्ठे होते हैं। हकीकत में हमें इस शख्स की कारकर्दगी पर इसे मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो बिल्कुल चैन से नहीं बैठता। हर मर्तबा उसे मीटिंग और दर्स से मना किया जाता और वो किसी दूसरी जगह मीटिंग या दर्स कर लेता है।
1: असल में मेरी उनसे आशनाई इनकलाब से पहले की है, जब वो मशहद में थे। वो पहले शख्स थे जो लोगों के साथ सामाजिक और फिक्री राब्ता बरकरार करने में कामयाब हुए थे। उस जमाने में शाही निज़ाम के दौरान वो मशहद के खुमैनी मशहूर थे, यानी इस तरह वो सावाकियों के भी सावाकियों के यहाँ भी मशहद के खुमैनी मशहूर हो गए थे। ये सच है कि उन्होंने फिक्र अमल को एक जगह इकट्ठा कर दिया था।

0: अगर हम आवाज बुलंद कर रहे हैं और हमारे भाई यूनिवर्सिटियों, अस्पतालों, स्कूलों, सड़कों और बाजारों में आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हर सूरत सियासी मुसलमान अफराद को रिहा किया जाए, ये एक मुतालबा नहीं बल्कि ये एक ऐलान है कि वो हुकूमत जो मुसलमान होने का दावा कर रही है उसने कई हज़ार शरीफ मुसलमानों जो कि हम में से बेहतरीन हैं और हमारे पाक किरदार जवानों और बूढ़ों को तारीख जेलों में कैद कर रखा है ये एक जुर्म है जिसका इर्तकाब हुकूमत ने किया है।
1: कभी आप पूरा माह रमज़ान तेहरान में गुजारते थे, ये कभी मुहर्रम 20 सफ़र तक 50 दिन के दौरान आप शहर से बाहर ना जाते, एक दिन में कई जगहों पर खिताब के लिए सफ़र करते, एक जलसे से दूसरे में और एक मजलिस से दूसरी मजलिस में। सवाक की फाइलें बताती हैं कि उनके प्रोग्राम में शिरकत करने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। 1965 में आपने एक जगह खुतबे का सिलसिला शुरू किया तो सामईन की तादाद 100 तक हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद जब वहां खिताब के लिए गए तो आपका खिताब सुनने के लिए 1000 के करीब लोग पहुंच चुके थे। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 31 बरस थी।

0: इसके बावजूद कि आकाए खामनाई को इस गांव में आए हुए 50 साल गुजर चुके हैं, लेकिन लोगों को आज भी मशहद से एक जवान सैयद का आना याद है।
1: जिस घर के सामने अब हम खड़े हैं, हाजी

0: खुदा बख्श गुलामी का घर है। आका खामनाई यहाँ इस बालकोनी में तशरीफ फरमा हुआ करते थे और दीवार पर जो तस्वीर देख रहे हैं इनकलाब से पहले की है और उसी वक्त से यहाँ लगी है। इनकलाब से पहले वो यहाँ आए थे, वो दर्स पढ़ते थे और दर्स पढ़ाते भी थे। यहाँ वो इस्तराहत करते और कभी मस्जिद चले जाते। वो इमाम बारगाह में मजालिस भी पढ़ते और तकारीर भी करते। इलाके और गांवों की कसीर तादाद में लोग शिरकत करते और शरई सवालात दरियाफ्त करते।
1: यहाँ इस घर में आका खामनाई ने एक महीने से कुछ ज्यादा कयाम किया और सुलह इमाम हसन किताब का तर्जुमा मुकम्मल किया। घर के करीब नीचे की तरफ बाग और चश्मे के किनारे जाया करते थे।

0: आपका नाम क्या है?
1: मैं अबुल फजल मालूली हूँ।
0: ठीक है, शुरू कीजिए।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनाब गुलामी के हमसाए हैं, जिनके घर रहबरे मौज़्ज़म कयाम पजीर थे। मैं उस वक्त बच्चा था, यहाँ खेलता था। रहबर मुताला करने के लिए यहाँ आया करते थे, क्योंकि बसाओकात यहाँ पानी नहीं पिया जा सकता। वो मुझे कहते थे, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ।
0: ये क्या चीज है?
1: इसे आलू कहते हैं।
0: अच्छा, आलू कहते हैं।
2: अब हम खरू जा रहे हैं। खरू निशापुर के करीब खुरासान के देहातों में से एक है। आकाए खामनाई को जब महसूस होता कि सावाकी करीब हो रहे हैं, तो वो यहां आ जाया करते।

यहाँ आप महसूस करेंगे कि जैसे वक्त रुक गया है। जब आप गांव को ऊपर से देखें तो यूं लगता है कि जैसे ये गांव आलूदगी से निजात हासिल कर चुका है। मकानात आज भी इतने ही खूबसूरत हैं जितने वो चंद सौ साल पहले थे।

0: की आदलाना तकसीम है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसानी इज्जत का वकार है जिसका एहतराम हम सब पर वाजिब है। जब तागूत के इनकार की सदा बुलंद हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ सुनाई देगी जो कानों से टकराएगी।
1: इनकलाब से पहले वो हमें कुरान की तालीम के साथ साथ फ़न तकरीर व ख़िताब भी सिखाते थे। उस वक्त मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। फ़न तकरीर सीखने के लिए हमें आकाए खामनई, शहीद मुतहरी या फ़खरुद्दीन हिजाजी की कैसेटें दी जाती थीं। लेकिन आकाए खामनई की कैसेटें बलागत और अंदाज़े बयां व ख़िताब के लिहाज से बुलंद दर्जा रखती थीं। हम कैसेटों को मस्जिद की लाइब्रेरी से हासिल करते थे और फिर घर ले जाकर मश्क शुरू कर देते थे।
2: ईरान में इनकलाब की कामयाबी को 40 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। इसमें इनकलाब तहरीक का उरूज वो वक्त था जब इमाम खुमैनी एयर फ्रांस के हवाई जहाज से नीचे आए और अवाम ने इस्तकबाल किया। 70 लाख ईरानी अपने कायद की मुल्क बदरी के बाद वतन वापसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये तस्वीर पेशगी तैयारी के बगैर बेसाख्ता वजूद में आई है कि जिनमें आवाम अपने रहबर के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर निकल आई। लेकिन हर तारीख दान जानता है कि सब कुछ अचानक और बेसाख्ता ना था, क्योंकि इन तस्वीर के पीछे इनकलाबी तहरीक के कारकुन गली कूचों, शहरों और देहातों की मस्जिद, मदारिस और स्कूलों और कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में इस अजीम इस्तकबाल को मुनज्जम कर रहे थे। वो जिद्दोजहद जिसे यहाँ पहुँचने में 14 साल लगे थे। गौर से देखें, ये सब कुछ अचानक ना हुआ था, बल्कि इसमें आकाए खामनई और इनके दोस्तों का तैयार करदा मुनज्जम मंसूबा था। नेस्त तौफी के खुदा शामिल हाल थी और ये आकाए खामनई का एतकाद है।

पसी हो गई, जन्नत के बागों में से एक बाग हो गई, नेमत जन्नतों की मुझे अता की गई। और एक मर्तबा हुसैन मुझसे कहते, अमीर कबीर ये बस ये टेम्पररी जो है मेरे तरफ से तोहफा कबूल कर, जो आखिरत का तोहफा है तेरे कर्जा है मुझ पर, वो आखिरत में मैं तुझे अदा करूंगा। हाथ जोड़ कर कहूंगा, मौला अरे आपने एक शख्स जो प्यासा था और प्यासा रहा आपकी मोहब्बत में, इतना जो है जजा इतनी जजा दी, लेकिन मौला कोई आपकी प्यास को देखे। आप सुनिएगा, जब मौला दुनिया से जा रहे थे इतनी शदीद प्यास थी, बार बार पुकारते थे हाय कोई दो घूट पानी दे दे, जिगर फट रहा है मेरा, कोई पानी ना दिया। उस वक्त मौला आपको और मुझे याद किया, ए शिया थी महमा शरीफ तुम मां अज़बिन फज़ करूनी, ए मेरे शिया जब ठंडा पानी पीना, हुसैन की ये प्यास को याद करना और किसी गरीब और मजलूम को देखना, हुसैन की मजलूमियत करबला में याद करना। अरे वारिस कायनात एक जानवरों की तरह ज़बा किया जा रहा, वाह हुसैना वाह मज़लूम। सियालम الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الا ولعنه الله على القوم الظالمين ما سمح حسين।